0: ଏକ ସୁନ୍ଦର ସକାଳ ସହ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ସବୁଥର ପରି ଏଥର ବି କହିବୁ, ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତୁ, ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ସହିତ ମନ ବି ଆପଣଙ୍କର
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है। श्री शाह ने कल गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर दो नई सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना के 60वें वर्ष में सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह से बदलने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने एक चतुर्भुज सुरक्षा ग्रिड की स्थापना की घोषणा की है।
2: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: गृह मंत्री ने ड्रोन, रडार, निगरानी टावर, अत्याधुनिक तकनीक और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा तंत्र के निर्माण का विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके स्थापना के बाद कोई भी देश की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज सुबह बिहार के गया पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग लाइंग की यह पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमा के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। राष्ट्रपति यू मिन आंग आज शाम नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमा के राष्ट्रपति की कल म्यांमा भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। म्यांमा के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के उत्साहवर्धक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि कल तिरुवनंतपुरम में सेमीकंडक्टर स्टार्टअप नेत्रा सेमी ने देश का पहला एआई सिस्टम ऑन चिप नेत्रा A2000 विकसित किया है, जो उन्नत 12 नैनोमीटर नोड तकनीक पर आधारित है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत अनुदान जारी करने और उसके उपयोग के बारे में व्यापक समीक्षा बैठक की। बैठक में समग्र शिक्षा अभियान के तीसरे चरण को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने पर विशेष बल दिया गया। श्री प्रधान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष से समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण, पीएम श्री और अन्य प्रमुख योजनाओं के समन्वय से एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे स्कूली शिक्षा प्रणाली में बेहतर समन्वय और प्रभाव सुनिश्चित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायालय की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। और खेल में IPL क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में खेले गए दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल में गुजरात टाइटंस का मुकाबला कल अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली। सकाल 8:30 शुणे के हिंदी कथचित्र गीत सुगम संगीत शुणे सकाल 8:45 सकाल 9 शुणे कार्यक्रम विविध भारती केन्द्र दिन 10 शुणे आम केन्द्र कार्यक्रम गीतांजलि जो थे आम आपको शुणु ओडिया एवं हिंदी कथचित्र गीत 9 शुणे लोकगीत दिन 11:30 शुणिपारे सुगम संगीत दिन 12 शुणे कार्यक्रम विविध भारती केन्द्र पुणि आम आकाशवाणी ब्रह्मपुर केन्द्र आपने कार्यक्रम शुणिपारे अपराह 5 सुगम संगीत सह अपराह 5:30 शुणे युवपीढ़ी मान प्रस्तुत कार्यक्रम युववाणी रामचरित मानस शुणिपारे सन्ध्या 6:15 सन्ध्या 6:25 शुणे देशात्मबोधक गीत केतोटी आधुनिक गीत शुणिपारे सन्ध्या 6:30 सन्ध्या 7 प्रचार कर केतोटी ओडिया कथचित्र गीत सन्ध्या 7:25 आकाशवाणी कटक केन्द्र शुणे जिला हलचल प्रायोजित कार्यक्रम बयानी शुणे सन्ध्या 7:30 आकाशवाणी कटक केन्द्र राति 8 शुणे केतोटी हिंदी कथचित्र गीत केतोटी ओडिया कथचित्र गीत शुणिपारे राति 8:15 राति 8:30 शुणे केतोटी आधुनिक गीत विविध भारती केन्द्र कार्यक्रम शुणिपारे राति 9 राति 10 शुणे आकाशवाणी दिल्ली रिपीट प्रचार करू अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम श्रोताबंधु शुणिले आज प्रचारित होगा केतोटी कार्यक्रम संपर्क सूचना आकाशवाणी ब्रह्मपुर समय स्टूडियो घटी सकाल 7:02 परवर्त कार्यक्रम आंचलिक संवाद आमर स्वास्थ्य एवं परिपरे शुणिपारे ओडिया संवाद रिक्रीट प्रचार करुच्छ आकाशवाणी कटक केन्द्र किसी समय पर

0: दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
1: बीएसएफ प्रतिष्ठाकु 60 वर्ष पूर्ण होता बेले सीमा सुरक्षा रे बीएसएफ रो कार्यधारा को संपूर्ण रूपांतरण करने निष्पत्ति निया श्री सीमा सुरक्षा क्षेत्र में पारंपरिक पद्धति को परिवर्तन कर आंचलिक सुरक्षा व्यवस्था प्रचलन उपरे श्री शाह गुरुत्व से आंचलिक सुरक्षा व्यवस्था बीएसएफ जवान जनसाधारण प्रशासन स्थानीय पुलिस और सामरिक बाहिनी मध्य प्राथमिक दायित्व सामिल हो। स्वराष्ट्रमंत्री कहिछन्ति स्मार्ट सीमा सुरक्षा प्रकल्प अधीनरे सीमारे सुरक्षा ग्रिड सुदृढ़ करिबा पई उद्यम चलिछि। एथिरे कोटि कोटि टंका निवेश करा सह वाच टावर राडार एवं अत्याधुनिक प्रजुक्ति विद्या व्यवहार करा जाउछि। ग्रिड प्रतिष्ठा हेबा परे देशर सीमा लंघन करिबा पई केही साहस करिवे नाही बोली श्री शाह कहिछन्ति। पश्चिमबंग सह बांग्लादेश सीमारे तारबाड़ स्थापन पई पश्चिमबंग सरकार जमी जोगाई देथिबा स्वराष्ट्रमंत्री कहिछन्ति। केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान समग्र शिक्षा अभियान कार्यकारिता नहीं विस्तृत समीक्षा करिछन्ति। समग्र शिक्षा अभियान अधीन पांठि प्रदान एवं एहार कार्यान्वयन समीक्षा करी मंत्री श्री प्रधान एहार तृतीय पर्याय को दक्ष एवं स्वच्छ ढंग कार्यकारी करिबा उपरे गुरुत्व प्रदान करिछन्ति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री प्रधान कहिछन्ति समग्र शिक्षा अभियान प्रधानमंत्री पोषण अभियान उल्लास पीएम श्री और अन्यान्य योजनागुडी को सम्मिलित करी समन्वित पदक्षेप ग्रहण करा फळरे स्कूल शिक्षा इकोसिस्टमरे एही सब योजनागुडी अधिक प्रभावशाली ढंग से कार्यकारी हो पार। बैठक में केन्द्र राज्य संपर्क दृढ़ करने आलोचना होता। मंत्री श्री प्रधान कहते छात्र छात्री मध्य नवसृजन पुष्टिसार दक्षता विकास क्रीड़ा और कला उपर स्वतंत्र गुरुत्व दिया जातीय शिक्षानीति 2020 प्रभावशाली कार्यान्वयन गुरुत्व दिया। रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कहते रूस युक्रेन बद संघर्ष शेष होगा जाऊँच। रूस राष्ट्रपति वक्तव्य को उद्धार कर सेठाक गणमाध्यम संस्था रिपोर्ट कर युद्ध क्षेत्र में देखादी परिस्थिति आकलन कर युद्ध शेष पर्यायर पहुंचा केबे एथिलागि निर्दिष्ट समय सीमा विषय कौन मंतव्य दिया जाए। रूस राष्ट्रपति कहते युक्रेन से बुझाणापी से प्रस्तुत अच्छा कौन समय बुझाणा को प्रत्याख्यान करना। गोआ आज तार प्रतिष्ठा दिवस पालन कर 1987 मसीहा मई मस 30 तारीख में गोआ को भारतर 25तम राज्य भाव संपूर्ण राज्य मान्यता प्रदान करा जायतिला। आज पणजी ठारे कला एकेडमी रे गोआ राज्य दिवस उत्सव में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जोगदेव। देश में दाबीहीन आर्थिक संपत्ति संपर्क में सूचना जोगाई देवा उद्देश्य आर्थिक सेवा विभाग एक पोर्टाल आरंभ कर देशर 12 सरकारी बैंक सहयोग में यह पोर्टाल आरंभ कर अर्थ मंत्रालय सूचना अनुजाई अनक्लेम्ड आसेट्स पोर्टाल डट इन समस्त दाबीहीन आर्थिक संपत्ति संपर्क में सूचना प्रदान करद्वारा अधिक स्वच्छ एवं नागरिक कैंद्रिक आर्थिक इकोसिस्टम गठन हो पार बोली आकाशवाणी। म्यांमार राष्ट्रपति यू मिन अंग ह्लाइंग पांचदिनिया भारत गस्तरे आसी आज सकाळे बिहार गयारे पहुंचे। तांको सह कैबिनेट मंत्री वरिष्ठ अधिकारी और वाणिज्यिक नेतृत्व को नहीं गठित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आसुछन्ति। राष्ट्रपति भाव में ह्लाइंग प्रथम भारत गस्त यह अवसर में म्यांमार राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजार्चना करेंगे। परे म्यांमार राष्ट्रपति नूआदिल्ली में पहुंचा पर वैदेशिक मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साक्षात आलोचना करार कार्यक्रम रही आसंका म्यांमार भारत वाणिज्यिक बैठक में से जोगदेवे। सोमवार दिन म्यांमार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उभय देश मध्य

0: legal-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आम राज्य रे एबे स्वतंत्र सघन संशोधन एसआईआर कार्यक्रम आरंभ हो जाइछि। एथिपई 30 मई 2026 रु 28 जून 2026 पर्यंत बूथ स्तरीय अधिकारी माने प्रत्येक घर घर जाई प्रति निर्वाचकंकु दुईटी परिगणना फॉर्म देबे। फॉर्म गुडीकु voters.eci.gov.in वेबसाइट रु मध्य डाउनलोड करि पबे। फॉर्म दुईटी पूरण करबा परे एहाकु बीएलएम निकटरे दाखल करंतु एवं तांकठारु प्राप्ति स्वीकार ग्रहण करंतु। अधिक सूचना पई वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 को कॉल करंतु किंबा वोटर सर्विस पोर्टल किंबा ईसीआई नेट आपरे बुके कॉल विथ बीएलओ सुविधार उपयोग करंतु। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ओडिसांग द्वारा जनहित रे जारी।

0: ଏଇ ଭଜନଟି ଶୁଣୁଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ, ଅରିକ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରଚନାରୁ।
1: बेटा शौर्या, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और उससे पहले तुम्हारे दादाजी का।
2: वाओ पापा, ये घर कितना पुराना है।
1: बेटा, इस घर ने 3 पीढ़ियां देखी है
2: और अब तक इतना मजबूत खड़ा है।
3: कुछ चीजें वक्त के साथ और मजबूत होती है, जैसे आदि और चेटनाट सीमेंट का सुपर ग्रेट सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटनाट सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
1: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है चेट्टीनाड सीमेंट पर।
2: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले, चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

0: ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସବ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ସକାଳ 8 ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ। କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM.gov.in।

0: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरे दिन 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
0: संयुक्त सचिव ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरण केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है।
2: सरकार सभी घरों तक एलपीजी सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। श्री महाजन ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानें संचालित की जा रही हैं। पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि कच्चे तेल का टैंकर व्यापारिक पोत निसोस केरोस होर्मुज डलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल चुका है। इसके 3 जून को विशाखापट्टनम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस पोत पर लगभग 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल भारत आ रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6 चरण के आंकड़े कल जारी कर दिए। इसके अनुसार मातृ और शिशु स्वास्थ्य पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा में भारत ने प्रगति की है। सर्वेक्षण के अनुसार संस्थागत प्रसव 88.6% से बढ़कर 90.6% हो गए हैं। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर 2 पर बनी हुई है। सर्वेक्षण के अनुसार 12 से 23 महीने के बच्चों के टीकाकरण का आंकड़ा लगातार 96% से अधिक बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार मिशन परिवार विकास सहित राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रमों के निरंतर प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। सर्वेक्षण के अनुसार महिलाओं की डिजिटल समावेशन और वित्तीय सशक्तिकरण में निरंतर प्रगति हुई है। इसमें कहा गया है कि इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं की संख्या लगभग दोगुनी होकर 64.3% पर पहुंच गई है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि आयुष्मान भारत और विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा पहलों ने स्वास्थ्य सेवा में वित्तीय सुरक्षा मजबूत की है। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिन की भारत यात्रा पर आज पहुंचेंगे। उनके साथ कई कैबिनेट मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। राष्ट्रपति के रूप में यू मिन आंग हलाइंग की ये पहली भारत यात्रा होगी। गया में म्यांमार के राष्ट्रपति महाबोधि मंदिर और सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे आज बाद में नई दिल्ली पहुंचेंगे। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर से मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति की कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में भाग लेने की संभावना है। सोमवार को वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे।

0: नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच बैठक के दौरान म्यांमार और भारत के बीच आपसी संबंधों से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत म्यांमार के राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए उत्सुक है।
1: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
0: इस यात्रा के अंतर्गत म्यांमार के राष्ट्रपति व्यापार और उद्योग जगत से संबंधित वार्ताओं और शहर के विभिन्न स्थलों पर भ्रमण के लिए 2 जून को मुंबई भी आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के तरीकों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार सीमा सुरक्षा बल को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है।

0: some of the border Bangladesh or Pakistan its suraksha grid mazboot banane ka kaam hum smart border suraksha ke project ke तहत hum le rahe hain.
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी होगी। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराध्य की पीठ कल इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसे स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। महाधिवक्ता तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि सरकार युवाओं के लिए चिंतित है और ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगे ऐसी कोई चूक न हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पंजाब नगर निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने 8 नगर निगमों 75 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1977 वार्ड में से 958 वार्ड जीत लिए हैं। कांग्रेस को 397, शिरोमणि अकाली दल एसएडी को 192 और भाजपा को 172 वार्ड में जीत हासिल हुई है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 7 वार्ड मिले। निर्दलीय उम्मीदवारों ने 251 वार्ड जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। गोवा आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 1987 में इसी दिन गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और वो भारतीय संघ का 25वां राज्य बना था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज पणजी स्थित कला अकादमी में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे।
2: गोवा में आज आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह राज्य की पिछले 4 दशकों के उल्लेखनीय प्रगति और विकास यात्रा को रेखांकित करेगा। 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्ति के बाद गोवा दमन और दीव के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसके बाद 1967 में हुए ऐतिहासिक जनपद संग्रह ने गोवा की अलग पहचान को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त किया। वर्ष 1987 में कुकड़ी को राजभाषा का दर्जा मिलने के बाद राज्य गठन का रास्ता साफ हुआ और 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना। आज समारोह में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा। इसके साथ ही एक कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण, पुरस्कार वितरण और नागरिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न पहलों की शुरुआत भी की जाएगी। इसके बाद उपराष्ट्रपति गोवा स्थित CSIR राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का दौरा करेंगे। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काईकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज बहुत तेज बारिश की आशंका जताई है। विभाग ने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में ओलावृष्टि की भी आशंका व्यक्त की है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस की टीम प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंच गई है। न्यू चंडीगढ़ में कल दूसरे क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के बीच फाइनल कल अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए अब तक कुल 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। कल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भारतीय एथलीटों ने 4 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाले निर्वाचन आयोग की यह प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें

0: की आंसर शीट भी डिजी लॉकर में भेजे जाने की जानकारी दी है। पत्र लिखा है, यहीं से करा सकेंगे रीवैल्यूएशन। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पास करने की अनिवार्यता से छूट देने का सर्वोच्च न्यायालय का इंकार भी अनेक अखबारों में है। अमर उजाला लिखा है, समय सीमा एक साल बढ़ी। दैनिक जागरण ने भी इस खबर को प्रकाशित किया है। पत्र ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, सरकारी शिक्षकों को सेवा में बने रहने के लिए TET पास करना ही होगा। जनसत्ता ने कर्नाटक में कांग्रेस की बैठक आज होने का समाचार देते हुए लिखा है, DK शिवकुमार को चुना जाएगा नेता। पंजाब केसरी ने सिद्धरमैया की सिद्धि शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखा है, कर्नाटक में जितनी शालीनता और शांति के साथ कांग्रेस पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उसे भारतीय लोकतंत्र की जीवंत ताकत कहा जा सकता है। दैनिक जागरण ने घरेलू उड़ानों में कटौती से हवाई किराया 30% तक बढ़ने का समाचार दिया है। मौसम विभाग की चेतावनी भी कई अखबारों में है। अमर उजाला लिखता है, अटका मॉनसून, 7 दिन के बाद देगा दस्तक, 10% कम होगी बारिश। राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, बेवफा मॉनसून। दैनिक भास्कर लिखता है, इस साल सूखे का खतरा। हालांकि पत्र ने बिहार, झारखंड, बंगाल और उत्तर पूर्व में अच्छी बारिश की संभावना व्यक्त की है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए तेल कंपनियों को 30 दिन का LPG भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाए गए हैं। अस्पतालों में प्रसव बढ़कर 90.6% हो गए हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन अंग हलाइंग 5 दिवसीय यात्रा पर आज भारत आएंगे। मौसम विभाग ने आज देश के कई राज्यों में तेज बारिश और गरज के साथ तूफान आने का पूर्वानुमान लगाया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Center asks oil marketing companies to build 30 days LPG reserves as West Asia conflict persists. National Family Health Survey shows major gains in maternal and child health. Institutional deliveries rise to 90.6%. Myanmar President Min Aung Hlaing to arrive in India this morning on a 5-day visit. IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms across several states in the country today. Indian athletes shine at Asian Under 20 Athletics Championships in Hong Kong. Clinch 7 medals including 4 gold on day 2. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Rajasthan Royals by 7 wickets to set up title clash with Royal Challengers Bengaluru. The government has asked the public sector oil marketing companies to set up liquefied petroleum gas LPG reserves for at least 30 days as the West Asia conflict persists, disrupting global energy supplies. Joint Secretary at the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, stated this while talking to reporters yesterday during the inter-ministerial press briefing on the West Asia conflict. Outlining the precautionary measures to safeguard against supply shocks, Ms. Sharma said India was also working to increase crude oil storage capacity.
3: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. They are working on it, and similarly for crude also we are working.
2: Additional Secretary Gulf in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said that the government is closely monitoring developments in the Gulf and West Asia.

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: ए दुश्मने तमन्ना, ए दुश्मने तमन्ना।

दर्द सा अपने दिल में जो पाया, जान गए हम किसने बुलाया। दर्द सा अपने दिल में जो पाया, जान गए हम किसने बुलाया। उनसे ही मिलने

0: ओ जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम है राजकुमार, होए आगे पीछे हमारी सरकार।
1: ଏଇ ଗୀତଟି ଶୁଣୁଥିଲେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ରାଜକୁମାର କଥାଚିତ୍ରରୁ, ମହମ୍ମଦ ରଫିଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ, ଶଙ୍କର ଜୟକିଶନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରୁ, ଶୈଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଚନାରୁ।
2: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି, ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି, ସଂଘର୍ଷୋ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ, କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓଁ କି, ଅନକହୀ ବିରାସତ କି, ଉମ୍ମୀଦେ ନୟେ ଭାରତ କି। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन।

0: घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सह कर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
1: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

चल तेरे इश्क में बढ़ जाते हैं। ये प्यारा सा गाना भी आप सुन रहे थे कलर टू फिल्म से, विशाल मिश्रा, नीति मोहन और साथियों की आवाजें, गीतकार थे सईद कादरी और संगीतकार मिथुन। दोस्तों आज है इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो यानी अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। इसका उद्देश्य आलू के पोषण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा में उसके महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आलू विश्व की प्रमुख खाद्य फसलों में से एक है, ये हर आय वर्ग के भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। भारत सहित अनेक देशों में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, ये किसानों की आय बढ़ाने में भी सहायक है। आलू से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं जैसा कि लोग रोज खाते भी हैं, इसलिए इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। आलू की खेती और उससे बनने वाले नाना प्रकार के व्यंजन आजीविका का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए इस वर्ष की थीम भी शायद यही बात कह रही है। इस वर्ष की थीम है वेयर पोटैटोज ग्रो लाइवलीहुड्स फ्लरिश। तो चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ा जाए और आपको सुनवाते हैं ये गाना।

सब लोग की तरह ताक कर खोल दे दिल की खिड़की देख ले झांक के संकट ना आए कोई पापा की नाक पे।

0: अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान की आवाज में पिंटू की पप्पी फिल्म का गाना। रमन रघुवंशी ने लिखा इसे और संगीत से संवारा डॉक्टर नेट्स ने। आप सुन रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अनाज,
2: कहीं बेख्याल हो कर यूं ही डूलिया किसी ने।
1: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल,
3: जाने दूं नाग मुहब्बत प्यार से।
1: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदा बहार नगमे।

0: बिखरता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे,
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, तो हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लीजिए सुनिए रश्मि रॉकेट फिल्म का गाना। आवाजें हैं भूमि त्रिवेदी और साथियों की, कौशल मुनीर के बोल और तर्ज अमित त्रिवेदी की।

वीरत भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एआर रहमान और हीरल विरदिया की आवाजों में महबूब का लिखा और एआर रहमान का संगीत बद किया गाना। फिल्म का नाम हीरोपंती टू।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूँ? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूँ।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना

0: भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
1: विविध भारी राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कनों से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश देहाती डिस्को फिल्म से दिव्य कुमार की आवाज प्रणव वत्स ने लिखा इसे और संगीतबद्ध किया है गणेश आचार्य ने।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बड़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर।

0: सुनने वालों को नमस्कार। आज के अंकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे अभिनेता की जो सिनेमा के पर्दे पर बतौर विलेन भी नजर आए।
1: मैं थूकता हूं तेरी सूरत, थूक कर दिखाऊं? अगले पे आ जाना, कल यहां पे हजारों लोग होंगे, पूरी फोर्स बदलवा कर दूंगा मैं, हाहाकार मचा दूंगा।
2: हाहाकार तेरे बाप का राजा।
3: क्वाइट विक्रम, मामा ठाकुर से गलती हुई है।
2: बात करें सर,
1: ये बात मैं दिल्ली तक कर जाऊंगा।
2: चलिए दिल्ली।
0: बतौर चरित्र अभिनेता भी, बतौर कॉमेडियन भी।
4: ए खाली भाई, मेरा नंबर है।
5: और यार तू दोस्त है उनका, मैं गया तू एक ही बात है।
4: ना ना, दोस्त तो घर पे आ।
5: क्या बात करता है, सिर्फ 50 रुपया, ये तो बहुत कम है यार। तू टेंशन मत ले यार, कोयला ले और 50 के आगे एक जीरो लिख डाल, 500 हो जाएगा। खत्म।
6: क्या 500? खालिद भाई मेरी बीवी का।
5: अरे सॉरी सर, ये तो बहुत बुरा हुआ, सॉरी।
6: एक बार ये लिखने वाला खालिद भाई मेरे हाथ में आया है, मैं उसकी डेथ सर्टिफिकेट लिख डालूंगा, देखना।
5: मेरे को मालूम है किसने लिखा है।
0: और उन्होंने रंगमंच पर भी अपनी अभिनय प्रतिभा दिखाई। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम सलाम कर रहे हैं जाने माने अभिनेता परेश रावल को।

परेश रावल का जन्म 30 मई 1950 को मुंबई में हुआ था। उनका परिवार जुहू में रहता था और उनका एडमिशन वहां जुहू स्कूल में करवा दिया गया। जब वो 11-12 साल के थे तो स्कूल के मंच पर अभिनय करने लगे और जुहू स्कूल की प्रिंसिपल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने नन्हे परेश से कहा कि वो अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मंच पर वो अपनी अभिनय प्रतिभा की जौहर दिखाना जारी रख सकते हैं। स्कूल की पढ़ाई इसी तरह से चलती रही। रंगमंच और पढ़ाई को किसी तरह से परेश रावल ने बैलेंस किया और फिर मुंबई के नरसी मुंजी कॉलेज में पढ़ने लगे। यहां के प्रिंसिपल ने भी परेश रावल की अभिनय प्रतिभा को समझा और उनके साथ सहयोग किया, यानी उन्हें कॉलेज के लेक्चर्स छोड़ देने की अनुमति मिल गई क्योंकि वो अपने कॉलेज के लिए थिएटर किया करते थे। परेश रावल ने अपने कॉलेज को कई प्रतियोगिताओं में जिताया। उसके बाद 1973 आया जबकि परेश रावल ने पेशेवर थिएटर ज्वाइन किया। इंडियन नेशनल थिएटर के बैनर तले उन्होंने अपना पहला प्ले किया जिसका नाम था वैन छे मौत। ये वो दिन थे जब परेश फिल्मों में काम नहीं करना चाहते थे, वो थिएटर की दुनिया में खुश थे क्योंकि यहां उन्हें अपने मन मुताबिक एक्टिंग करने मिल रही थी। लेकिन फिर उनकी नजर पड़ी नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के काम पर और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि थिएटर के अलावा फिल्मों में भी अभिनय

अब रेश को ये समझ में आ गया था कि फिल्मों में उनके लिए फिलहाल तो जगह नहीं है। वो थिएटर में अपना पूरा ध्यान लगा रहे थे। एक दिन की बात है, मुंबई के मशहूर पृथ्वी थिएटर में परेश रावल के किसी नाटक का शो चल रहा था। जाने माने प्रोड्यूसर करीम मोरानी उस शो को देखने आए और उन्होंने नेपथ्य में जाकर परेश रावल से भी बात की और बाद में निर्देशक राहुल रवेल से परेश के नाम की सिफारिश की। राहुल रवेल उन दिनों फिल्म बना रहे थे अर्जुन, और सन 1985 में परेश रावल को फिल्म अर्जुन के लिए साइन कर लिया गया। शूटिंग का पहला दिन था, पहली बार परेश रावल कैमरे का सामना कर रहे थे। उन्होंने अपना टेक इतनी अच्छी तरह से दिया कि निर्देशक राहुल रवेल ने कहा, परेश जी अब आप मेरी हर फिल्म में काम करेंगे। और इस तरह से परेश रावल थिएटर की दुनिया से होते हुए फिल्मों में चले आए। धीरे धीरे परेश रावल ने फिल्मी दुनिया में अपने पैर जमाने शुरू किए, लेकिन इन दिनों वो नाटक करते चले जा रहे थे। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सन 1976-77 का जमाना था। परेश रावल एक गुजराती नाटक कर रहे थे ठुकर, जो पीटर शफर्स के नाटक इक्वल पर आधारित था, और इन दिनों उनकी मुलाकात हुई मॉडल और अभिनेत्री स्वरूप संपत से। परेश रावल को स्वरूप संपत से प्यार हो गया, लेकिन दिक्कत यह थी कि परेश रावल का ताल्लुक एक मध्यमवर्गीय गुजराती परिवार से था और स्वरूप संपत एक अंग्रेजी ना परिवार से आई खूबसूरत मॉडल, मिस इंडिया और एक बेहद खूबसूरत नाजुक शख्सियत थी। दोनों का कहीं कोई मिल नहीं था। परेश कहते हैं कि ये उनके लिए सपनों जैसे दिन थे। आखिरकार एक दिन परेश रावल और स्वरूप संपत ने शादी कर ली।

0: परेश रावल कहते हैं कि फिल्मों में अभिनय के लिए अगर हिंदुस्तानी सिनेमा के कोई आदर्श हैं उनके लिए तो वो हैं बलराज साहनी, नसीरुद्दीन शाह और ओम पुरी। परेश रावल का ये भी मानना है कि अभिनय उन्हें बड़ा ही दिलचस्प करियर लगता है, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में एक जीवन में कई जीवन जीने का मौका मिलता है। अर्जुन के बाद परेश रावल को फिल्मी दुनिया में अपना नाम अच्छी तरह से कमाने का मौका मिला तो वो थी महेश भट्ट की सन 1986 में आई फिल्म नाम। इसमें भी परेश रावल ने विलेन का रोल किया था। इसके बाद तो परेश रावल ने कई फिल्मों में तरह तरह के रोल किए। कभी वो बतौर विलेन नजर आए, कभी चरित्र अभिनेता के तौर पर, और कभी आपको हंसाते हुए नजर आए, कॉमेडी करते हुए।
1: विश्वजीत, हाँ बोल, ये इसमें कौन सी साड़ी पहननी है?
2: पता नहीं इनके नाम।

0: कागज पे अपना दस्तखत दे तेरे बाबा।
1: आपको मुझ पे भरोसा नहीं?
2: ये इसके दिल में खोट है,
1: तेरे दिल में खोट है। मैं तो किराया देकर रहता, तू तो मुफ्त में रहता।
2: मुफ्त में रहता तो क्या हुआ, मैं दस्तखत करने को तैयार हूँ।
1: तो मैं भी दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ।
2: हाँ करना तू,
1: हाँ तो तू भी करना।
2: हाँ तो कागज लेके आना तू।
1: तू कागज ले।
2: अरे मैं क्यों लेके आऊं?
1: मैं क्यों?
2: तुम दोनों में से दोनों 5000 रुपये पर लेके आओ।
0: ये देवा, ये दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है? उठा ले रे बाबा, उठा ले।
2: मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले।
3: चलो पेपर साइन किया है इसने, अभी तक नहीं किया। खोट है इसके दिले।
1: बताओ ना, साइन कर रे बाबा। तू कर ले साइन, साइन कर।
4: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
1: क्या हुआ, आपको गाना सुनाई दिया?
2: गाना? ये सब बहानेबाजी है, मैं चैलेंज मार के बोलता हूँ ये साइन निकलने वाला।
1: ये तो साइन कर रहे बाबा, साइन कर ना जल्दी, साइन कर रहे, साइन कर।
4: गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है।
1: आपको गाना नहीं सुना दे रहा?
2: कौन सा गाना?
1: साफ सुनाई दे रहा है।
2: ये गुरु घंटाल आदमी है, साइन नहीं करने वाला। मैं कहता हूँ इसका ओरिया पिस्टल उठाओ, भागें तो उसको।
1: ये तो साइन कर रहे, साइन कर रहे, गाने गाने लगाए, साइन कर रहे, गाने।
5: हेलो
3: हेलो, देवी प्रसाद
1: चम्मा? नहीं देवी प्रसाद नहीं है, तुम क्या करोगे?
3: सर वो मेरी मछली का क्या हुआ?
1: वो तो मैं खा गया।
3: खा गए?
1: हाँ, वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
6: बतौर विलेन परेश रावल अपनी दो फिल्मों को बड़ा महत्वपूर्ण मानती हैं। एक है फिल्म डकैत और दूसरी फिल्म कब्जा। आज परेश रावल 100 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं और एक कलाकार के लिए सबसे मुश्किल होता है अपनी कुछ प्रतिनिधि फिल्मों का चुनाव करना। लेकिन अपने एक इंटरव्यू में परेश रावल ने अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में बताया है। उनकी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है केतन मेहता की फिल्म सरदार, जिसमें उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार निभाया था। परेश रावल से जब पूछा गया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने तैयारी कैसे की, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो वो मिल नहीं सकते थे, वो इस दुनिया में नहीं है, तो परेश का जवाब था कि उन्होंने असंख्य तस्वीरें उनकी देखी और उन तस्वीरों के जरिए ये अंदाजा लगाया कि सरदार पटेल किस तरह से बोलते होंगे, किस तरह से चलते होंगे और उनका स्वभाव किस तरह का होगा। इसके अलावा उन्होंने इस अभिनय के लिए बहुत सारी रिसर्च भी की।
7: फिर वही बात, हम यहाँ पे आजादी की बात करने आए हैं, बंटवारे की नहीं। और अगर बंटवारा होना ही है तो उसका निर्णय एक आजाद देश के आजाद लोग करेंगे, अंग्रेज सरकार नहीं।
6: पूजा भट्टी की फिल्म तमन्ना को वो अपनी बहुत महत्वपूर्ण फिल्म मानते हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने एक वृहन्नला का, एक हिरणे का किरदार निभाया था। परेश ये कहते हैं कि ऐसे किरदार भी मानवीय होते हैं, उनका अपना संघर्ष, उनकी अपनी तकलीफें होती हैं और इस फिल्म के जरिए उन्होंने इस तरह के चरित्र की तकलीफों को सिनेमा के पर्दे पर जीवंत कर दिया था।

0: हेरा फेरी आंखें आवारा पागल दीवाना गरम मसाला दीवाने हुए पागल माला माल वीकली गुलमाल हलचल छुप छुप के भागम भाग शंकर दादा भूल भुलैया वेलकम मेरे बाप पहले आप ती धनादन और हंगामा जैसी ना जाने कितनी फिल्में हैं जिनके जरिए परेश रावल ने आपको हंसाया है।
1: और नाचते नाचते तुम्हारे पांव कहां पड़ रहे थे और घुंघरू किस ताल में बज रहे थे वो मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। अब जब तुम्हारी चोरी सामने आ गई है उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा कर लौंडे के साथ गुलछर्रे उड़ाने का बहाना बना रही हो।
2: अच्छा उल्टा चोर कोतवाल को लगे।
1: अरे नौटंकी मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या बेवकूफ समझ

0: इतना याद रखना, हम सब समझ गया हूँ। और ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। और जो महंगी महंगी साड़ी है जो तुम्हारी गोल घूमट जैसे बदन को पहनाई है उसका का? और दिन रात जो तरह तरह के खाने जो तुमने चाट चाट के रसोई घर में खाए उसका पैसा कौन देगा?
1: सन 1994 में परेश रावल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला फिल्म वो छोकरी के लिए, और फिल्म सर के लिए उन्होंने जीता फिल्म फेयर पुरस्कार।
2: हम लोगों को इतना खुश देखकर आपको अजीब लग रहा है ना? मैं बताता हूँ, बात यह है कि जब ये छोटी थी ना तो खुश रहती थी, खेलती रहती थी हाँ, लेकिन जिस दिन से इसकी माँ गई ना, चुप हो गई है और एकदम शमशान हो गया था। और इतने साल के बाद आपने सर पे हाथ रख दिया, मेरे घर में जान आ गई।

0: आरोपी संजावी ने थक गया इधर कचरा नहीं डालने का, इसको बोल इधर से कचरा उठावे वरना।
1: परेश रावल की एक महत्वपूर्ण फिल्म है अंदाज अपना अपना, जिसमें वो सलमान खान और आमिर खान के साथ नजर आए थे। परेश रावल रंगमंच पर भी सक्रिय हैं, उनकी कंपनी टेलीविजन के लिए सीरियल्स बनाती है और उन्होंने एक फिल्म का निर्माण भी किया है, ओ माई गॉड। ये फिल्म गुजराती के एक प्रसिद्ध नाटक पर आधारित थी।
2: किसे भेजनी नोटिस?
3: भगवान।
2: मिस्टर भगवान सरनेम?
3: पता नहीं क्योंकि हम लोग मिले नहीं है।
2: अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। अरे ये नोटिस किसे भेजूं?
3: हाँ लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। अच्छा, है?

0: सन 2014 में भारत सरकार ने परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जाने माने अभिनेता परेश रावल पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गनों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विद भारती पर।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

एक गीतटी सुनतले हिंदी कथा चित्र कुछ कुछ होता है रु उदित नारायण एवं आलका याग्निक का कंठ रु जतिन ललित का संगीत निर्देशन रु समीर का रचना रु श्रोतबंधु सब बेले समस्त कहते ए तोर ए जिनसटा एमती करिवार नथिला ए तोर से जिनसटा सेमती करिवार नथिला थर निज को पचरित पूछो तमे जो कामटा करूच से कामटा कोन ठीक थिला केबे निज हृदय को पचार निज हृदय को पचारि टिके बुझ जे तमे जो कामटा करिच से कामटा केते दूर ठीक केते दूर भूल तापरे सामना मनीष को कहिब जे तोर एटा करिबा कोन ठीक थिला आउ जदि तमे ए सब न भाव ताहले सेई सामना मनीषटी जदि प्रतिबदल रे तमको पचारिब कि मते जो एते सब कहुच प्रथमे निजे ठीक हो सेतेबेले केमती लागिव कहिले तेणु आमे समस्ते प्रथमे निज निजको सजाइबा दरकार श्रोताबंधु तापरे आमे

0: सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेली लॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित जारी।

प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा बिजुली योजना। एही योजनार लक्ष्य विद्युत बिल सहित वायुमंडलरु अंगारकामलकु ह्रास करिबा, सोलार स्थापन करिबा, अक्षय शक्ति क्षेत्र में विप्लव आणिबा, सबुज शक्ति उत्पादन को प्राथमिकता देउछन्ति सरकार। आज ही पीएम सूर्य घर योजना पई आवेदन करंतु, निज छात सौर प्यानेल लगातु, 1,38,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पातु।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के अंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: प्रधानमंत्री सूर्य घर मागणा बिजु योजना विद्युत बिल ह्रास करिबा सहित परिवेश को मध्य सुरक्षित करिपारिबे। यहाँ सहित उभय केन्द्र और राज्य सरकार तरफ 138,000 टंका पर्यंत सब्सिडी पाइबे। आज ही पीएम सूर्य घर योजना पाई आवेदन करंतु, निज छातरे सौर पैनल लगांतु।
2: आपण मैंने कड़े चले गीत कहीं शुणा जाऊनी भावुंत ना शुणा जीव तो शुणतु।

ഇട്ടിക്കിലി മിട്ടിക്കിലി ദോശം കാരെ കട്ടിക്കാലി ക

0: असुर कहु छंदी पूर्व जनमानी जा कन्या पूर्व जनमानी जा धन पूर्व जनमानी जा विद्या अग्रे
1: धावती धावती
0: कवि सूर्य बल देव रथ चंद्र कला कद्रे लिखिले
1: जय
0: जयपुर।

0: ସୁଭଦ୍ରି ଭଞ୍ଜଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୌରହରି ଦଳାଇଙ୍କ ରଚନାରୁ
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ हिस्से कहानी, कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसलिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: पशु पक्षी को अंशुघात रक्षा करने उपाय
3: अंशुघात नाई दिन 11 अपराह 3 पर्यंत टाण खरारे गृहपालित प्राणी मानंकु बाहर को न छाड़ी गुहाल किंबा छाई स्थान रे रखंतु।
2: पशु पक्षी को स्वच्छ ठंडा पानी पीवा दियंतु एवं प्राणी को विश्राम स्थान बा कोठरे जल कुंडर व्यवस्था करंतु।
3: गुहाल कबाट और झरकारे ओदा अखा छुलाई मझे मझे पानी सिंचन करंतु।
2: बुला पशु और पक्षी को अंशुघात रक्षा करने घर आगे जल कुंडर व्यवस्था करंतु।
3: अंशुघात हेले पशु पक्षी मने किछि खांति नहि, पाटी बाटे निश्वास नेबा सहित धके हुंती, पाटीरु ओ नाकपुडारु फेण बाहरे ओ समय समय जीभ पदा को बाहरि आसे।
2: अंशुघात आक्रांत प्राणी को तुरंत ठंडा छाई स्थान को स्थानांतरित करंतु। प्रचुर ठंडा पानी पीबा को देबा सहित निकटस्थ प्राणी चिकित्सकंक सह परामर्श करंतु।
3: अधिक जानिबा पई टोल फ्री नंबर 1962 किंबा 155333 रे जोगाजोग करंतु।
2: मत्स्य ओ प्राणी संपद विकास विभाग, ओडिसा सरकार।

0: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
1: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है। चेटीनाड सीमेंट पर
2: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले। चेटीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।

समाधान समारोह 2026 बंधुगण मान्यवर सुप्रीम कोर्ट रे विचाराधीन थिबा पारिवारिक विवाद दुर्घटना जनित क्षतिपूरण मामला चेक बाउंस मामला भू अधिग्रहण जनित मामला रफा योग्य फौजदारी मामला श्रम विवाद ओ अन्यान्य उपयुक्त मामला जेउथरे आपोस बुझामणा हेबा संभव आगामी अगस्त मास 21 22 ओ 23 तारिख रे एक विशेष लोक अदालत माध्यम रे भारतर मान्यवर सुप्रीम कोर्ट नुआ दिल्ली ठारे फैसला करा जिवो यार सविशेष विवरणी पाई निकटस्थ आईन सेवा अनुष्ठान किंबा 151 00 रे जोगाजोग करंतु।

0: ଗୀତଟି ଶୁଣୁଥିଲେ ସଙ୍ଗୀତା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଅଲେଖଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରଚନାରୁ। ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଶୁଣିଲେ କେତୋଟି ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମୟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଘଡ଼ିରେ ଦିନ 12ଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରିବେ ବିବିଧ ଭାରତୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଏଠି କହିଛୁ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମାନେ ଆକାଶବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 5ଟାରେ ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ ସହ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିବିଧ ଭାରତୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। कल नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस संबंध में जानकारी दी।
2: म्यांमार के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेता इन संबंधों को और मजबूत करने के बारे में चर्चा करेंगे। इस यात्रा का एक व्यापारिक पहलू भी है जिसमें दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। ये एक आधिकारिक यात्रा है।
1: सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में कहा कि देश में एलपीजी की कमी की कोई सूचना नहीं है। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि खाड़ी और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास भारतीय नागरिकों को समय पर सहायता प्रदान कर रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सिद्धरमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उन्हें नए नेता के चुने जाने तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में बने रहने के निर्देश दिए हैं। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो रहा है। 1 महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3 करोड़ 33 लाख से अधिक मतदाता

ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। मंत्रालय द्वारा यह सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली उन्होंने कहा

0: चांदन।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं घर आंगन, जहां बातें होती हैं हौसलों की, सपनों की, रिश्तों की, और मैं हूं आज आपके साथ मंजला। अभी आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और साथ ही साथ आप हमें सुन सकते हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज पर। और दोस्तों, जब भी कोई महिला अपने लिए आवाज उठाती है, वो सिर्फ अपनी नहीं, हर उस महिला की आवाज बन जाती है जो अब तक चुप थी। एक महिला का बस और नहीं कहना दूसरी महिला के लिए हिम्मत बन जाता है। आज बात करेंगे स्वास्थ्य की, सौंदर्य की, घर परिवार और जीवन जीने की कला की, और होंगे गीत संगीत। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि बदलाव की शुरुआत हमेशा एक आवाज से होती है, और शायद वो आवाज कभी आपकी हो।

अभी हम सुन रहे थे आशा भोंसले और मोहम्मद रफी को फिल्म सगाई से और आकाशवाणी को युवाओं से जोड़ने का प्रयास। दोस्तों, आकाशवाणी ने बीते 9 दशकों में देश की आवाज को हर घर तक पहुंचाया है। कभी यह सिर्फ समाचार और संगीत का माध्यम था, लेकिन समय के साथ इसने खुद को बदला, निखारा और नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाया। इसी बदलाव की एक बहुत बड़ी कड़ी रही FM का विस्तार। इस अभिनव पहल की शुरुआत मुंबई से हुई और जल्द ही इसका विस्तार चेन्नई, कोलकाता और गोवा जैसे प्रमुख शहरों तक हो गया। FM के आगमन के साथ ही जो प्रोग्राम थे उनकी में भी नया रंग देखने को मिला। अब रेडियो पर पश्चिमी संगीत की धुनें गूंजने लगी, प्रायोजित कार्यक्रमों ने अपनी जगह बनाई और काउंटडाउन और चैट शो जैसे फॉर्मेट शहरी श्रोताओं के बीच बहुत ही लोकप्रिय हो गए। FM रेनबो जैसे चैनल ने युवाओं के लिए एक अलग पहचान बनाई, जहां म्यूजिक, मस्ती और मॉडर्न कंटेंट का बेहतरीन मेल देखने को मिला। साथ ही साथ फोन इन प्रोग्राम्स ने रेडियो को एक तरफा माध्यम से आगे बढ़ाकर इंटरैक्टिव बना दिया। अब श्रोता सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अपनी बात भी रखते हैं, अपने सवाल, अपने अनुभव और अपनी आवाज के साथ। आकाशवाणी ने करियर, हेल्थ, मोटिवेशन और सामाजिक मुद्दों पर भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जो युवाओं को न सिर्फ जानकारी देते हैं बल्कि उन्हें सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। तो दोस्तों, 90 वर्षों का ये सफर हमें यही सिखाता है कि समय बदलता है, तकनीक बदलती है, लेकिन जो खुद को बदलने की हिम्मत रखता है वही हमेशा प्रासंगिक बना रहता है।

0: अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म काला पत्थर से।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीद नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मध्याचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: और अब बात एक ऐसी डॉक्टर की जिन्होंने भारत में नवजात शिशुओं की देखभाल को नई दिशा दी। हम बात कर रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित शिशु रोग विशेषज्ञ अर्मिडा फर्नांडिस की। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस भारत में न्योनेटल केयर यानी नवजात शिशु देखभाल की अग्रणी विशेषज्ञों में से एक मानी जाती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समय से पहले जन्मे और कमजोर नवजात शिशुओं की जान बचाने के लिए समर्पित किया। उनकी सबसे बड़ी पहल थी एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक, जो मुंबई के लोकमान्य तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल में स्थापित किया गया। यह एक ऐसी सुरक्षित व्यवस्था थी जहां माताओं द्वारा दान किए गए स्तन दूध को इकट्ठा किया जाता था, फिर मेडिकल जांच, पाश्चराइजेशन और सुरक्षित स्टोरेज जैसी सख्त प्रक्रियाओं से वो गुजरने के बाद उन नवजात शिशुओं तक पहुंचाया जाता था जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती थी। खास तौर पर NICU यानी नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती उन बच्चों के जो बहुत ही कमजोर होते हैं या समय से पहले जन्म लेने की वजह से खुद दूध नहीं पी पाते। आज ह्यूमन मिल्क बैंक नवजात शिशुओं के लिए जीवन रक्षक सहायता माने जाते हैं और डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस की इस पहल से प्रेरित होकर आज भारत भर में दर्जनों ह्यूमन मिल्क बैंक काम कर रहे हैं जो हर साल हजारों बच्चों को नई जिंदगी दे रहे हैं। उन्होंने हेल्थ केयर और महिला सशक्तिकरण को एक साथ

हाथ जोड़ा, माताओं को जागरूक किया और हजारों नन्ही जिंदगियों को नई उम्मीद दी। उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया और यह सम्मान सिर्फ एक डॉक्टर को नहीं बल्कि उस सोच को मिला जिसने ममता को चिकित्सा का हिस्सा बना दिया। डॉक्टर अर्मिडा फर्नांडिस की कहानी हमें ये सिखाती है कि चिकित्सा सिर्फ इलाज नहीं, संवेदना, जागरूकता और सही पहल भी जीवन बचा सकती है।

0: अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को फिल्म थी मिली।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अभी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
0: और दोस्तों आज अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस है। बात करेंगे उस साधारण सी सब्जी की जो हर रसोई की शान है। आलू सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत का भी खजाना है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह शरीर को ऊर्जा देता है, पेट भरता है और सबसे खास बात यह हर मसाले और हर स्वाद में आसानी से ढल जाता है। शायद यही वजह है कि भारत के हर राज्य ने आलू को अपना अलग अंदाज दिया है। छोटे आलुओं को डीप फ्राई करके काजू के पेस्ट और मसालों में पकाया जाए तो बनता है कश्मीर का दम आलू। उबले आलू को खसखस के पेस्ट और सरसों के तेल में हल्का मसाला देकर पकाया जाए तो बनता है बंगाल का आलू पोस्तो। उबले आलू को लाल मिर्च, जाखिया और धनिये के साथ भुना जाए तो बनते हैं उत्तराखंड के आलू के गुटके। मसालेदार आलू के मिश्रण को बेसन में लपेट कर तला जाए तो बनता है महाराष्ट्र का बटाटा वड़ा। नारियल के दूध, करी पत्ते और हल्के मसालों में आलू को पकाया जाए तो बनता है केरला के स्टू। उबले आलू को सरसों के कच्चे तेल, प्याज और हरी मिर्च के साथ उसको मसल दिया जाए तो बनता है असम का पिटिका। और वैसे ही भारत के अलग अलग हिस्सों में आलू के कई और स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। आलू को मसालों और मक्खन के साथ आटे में भरकर तवे पर सेका जाए तो बनता है आलू पराठा। आलू और मसालों को मैदे की परत में भरकर तला जाए तो बनता है समोसा। मसालेदार आलू को कटे हुए प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, कच्चे सरसों के तेल और धनिये के साथ मिलाया जाए तो बनता है बिहार के आलू का चोखा। सच ही तो है एक साधारण आलू, लेकिन हर राज्य में अलग स्वाद, अलग संस्कृति और अलग कहानी। तो दोस्तों आपका पसंदीदा आलू व्यंजन कौन सा है, क्योंकि भारत में आलू सिर्फ सब्जी नहीं स्वादों का उत्सव है। हमें ईमेल भेजिए और बताइए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldg@gmail.com। हमें आपके संदेश का इंतजार रहेगा।

अभी हम सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म थी खानदान। और अब हम बात करेंगे भारत की उस अद्भुत धरोहर की जिसे देख लगता है मानो पत्थरों में सूरज की रोशनी कैद हो गई है। ओडिशा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर 13वीं शताब्दी में बने इस भव्य मंदिर को राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसकी सबसे खास बात है इसका अनोखा आकार। पूरा मंदिर एक विशाल रथ की तरह बनाया गया है जिसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए, 7 घोड़े बने हैं। ये सूर्य देव के रथ का प्रतीक है जो समय और जीवन की निरंतर गति को दर्शाते हैं। कोणार्क मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। इसकी वास्तुकला, नक्काशी और वैज्ञानिक सोच आज की दुनिया को हैरान कर देती है। अब बात उस रहस्यमय विशाल चुंबक की, मैग्नेट की, जिसकी कहानी आज भी लोगों को रोमांचित करती है। कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक बहुत बड़ा मैग्नेट लगा था। लोक कथाओं के अनुसार उसी चुंबक की ताकत से मंदिर के गर्भगृह में सूर्यदेव की मूर्ति हवा में संतुलित रहती थी। कुछ कहानियां ये भी कहती है कि समुद्र से गुजरने वाले जहाजों के कंपास इस चुंबक से प्रभावित हो जाते थे। इसी वजह से बाद में उस विशाल चुंबक को निकाल दिया गया। माना जाता है कि चुंबक हटने के बाद मंदिर का संतुलन बिगड़ गया और धीरे धीरे मंदिर का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। फिर भी सदियों बाद आज भी कोणार्क सूर्य मंदिर उसी शान से खड़ा है, अपनी अद्भुत खूबसूरती, अनोखी वास्तुकला और समृद्ध इतिहास को अपने भीतर समेटे हुए। तो अगली बार जब आपके हाथ में 10 रुपए का नोट आए तो उस पे बना हुआ सन टेम्पल जरा ध्यान से देखिए। वो सिर्फ एक तस्वीर नहीं, भारत की अद्भुत कला, विज्ञान और इतिहास की पहचान है कोणार्क सूर्य मंदिर।

अभी हम सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोंसले को फिल्म थी जमीर। गर्मियों में मौसम अपने साथ धूप छुट्टियों की मस्ती तो लाता है, लेकिन साथ ही लाता है टैनिंग, सनबर्न और त्वचा से जुड़ी कई परेशानियां भी। ऐसे में जरूरी है कि इस मौसम में हम अपनी त्वचा को थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं बल्कि सही तरीके से ख्याल रखें। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात सनस्क्रीन। घर से बाहर निकलने से लगभग 20 मिनट पहले SPF 30 या उससे अधिक वाला सनस्क्रीन जरूर लगाएं। और अगर लंबे समय तक धूप में रहना हो तो 2-3 घंटे में इसे दोबारा लगाना ना भूलें। गर्मियों में शरीर को जितनी जरूरत पानी की होती है उतनी ही आपकी त्वचा को भी, इसलिए दिन भर खूब पानी पिए। नारियल पानी, नींबू पानी और मौसमी फलों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें, क्योंकि स्वस्थ त्वचा की शुरुआत अंदर से होती है। धूप से बचने के लिए सिर्फ सनस्क्रीन नहीं बल्कि छाता, धूप का चश्मा और सूती कपड़े भी बहुत मदद करते हैं। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक की तेज धूप से हो सके तो बचें। अब सनबर्न और टैनिंग के लिए ठंडक देने वाला फेस पैक भी फायदेमंद हो सकता है। 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में 1/4 चम्मच चंदन पाउडर और 1/2 चम्मच संतरे के छिले का पाउडर मिलाएं। इसमें खीरे का रस डालकर इसका एक मुलायम सा पेस्ट रेडी करें। इसे चेहरे पर लगभग 10 से 15 मिनट तक लगाकर रखें और फिर ठंडे पानी से धो लीजिए। ये जो मास्क है त्वचा को ठंडक देता है, सनबर्न के असर को कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर त्वचा पर ज्यादा जलन, खुजली या रेडनेस हो गया हो तो घरेलू उपायों के बजाय डॉक्टर की सलाह लेना बेहतर होता है। तो इस गर्मी अपनी त्वचा का ख्याल रखना बिल्कुल मत भूलिए।

अभी हम सुन रहे थे महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को फिल्म थी गीत। और दोस्तों, गर्मी शुरू होते ही सिर्फ तापमान नहीं बढ़ता है, हमारे घर का माहौल भी बदलने लगता है। तो क्यों ना इस हर घर को ऐसा गर्मियों वाला नया रूप दिया जाए जो आकर्षक भी हो, ठंडक भी दे और धरती माँ को भी पसंद आए। सोचिए, दरवाजा खुलते ही हल्की सी मिट्टी की खुशबू, खिड़की पर हिलती हुई बांस की घंटियां और कमरे के कोने में छोटा सा हरियाली का कोना, वाह, यही तो है रियल समर वाइब। तो सबसे पहले एक मजेदार और काम की तरकीब, पुरानी सूती साड़ियों या दुपट्टों को फेंके मत, उसे कुशन कवर, मेज पर बिछाने वाले कपड़े या पर्दे बनाइए। घर भी कलरफुल लगेगा और रिसाइकल का शानदार उदाहरण भी बन जाएगा। और दोस्तों, अगर घर बहुत गर्म हो जाता है तो बालकनी या खिड़की के पास वर्टिकल गार्डन लगाइए। छोटी छोटी बोतलों में पौधे टांग दीजिए, ये सिर्फ खूबसूरत नहीं लगते बल्कि आसपास की गर्मी को थोड़ा सा कम करते हैं। एक और शानदार उपाय, मिट्टी के घड़ों और मिट्टी की सजावट को घर में जगह दीजिए, यह घर को प्राकृतिक ठंडक भी देते हैं, देखने में भी बहुत ही देसी और सुरुचिपूर्ण लगते हैं। अब बात खुशबू की, कमरे को खुशबूदार बनाने वाला स्प्रे खरीदने की बजाय एक कटोरे में पानी भरिए, उसमें नींबू के टुकड़े, पुदीना और गुलाब की पंखुड़ियां डाल दीजिए, पूरा घर प्राकृतिक ताजगी से भर जाएगा। और हाँ, दिन के समय भारी कालीन हटाकर बांस या जूट की चटाई बिछाइए।

अभी हम सुन रहे थे जगजीत सिंह और चित्रा सिंह को फिल्म थी साथ साथ। और दोस्तों डिग्री जरूरी है, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री ही काफी है? जरा सोचिए, हम सालों पढ़ाई करते हैं अच्छे कॉलेज, अच्छे मार्क्स, अच्छी डिग्री के लिए, लेकिन असली जिंदगी की परीक्षा में क्या ये सब अकेले हमें आगे बढ़ा पाते हैं? सच ये है कि डिग्री के साथ कुछ जरूरी लाइफ स्किल्स सीखना भी उतना ही जरूरी है। सबसे पहले संचार कौशल यानी कम्युनिकेशन। आप क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, यही तय करता है मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे या नहीं। सार्वजनिक बोलने की कला यानी पब्लिक स्पीकिंग, भीड़ के सामने आप कॉन्फिडेंस से बोलना आपको हर जगह एक अलग पहचान देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस, अपने जज्बातों को समझना और दूसरों को महसूस करना, यही रिश्तों को मजबूत बनाता है। नेटवर्किंग, सही लोग सही समय पर आपकी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। मोल भाव की कला यानी नेगोशिएशन, जो आप डिजर्व करते हैं उसे पाने की कला सीखी। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज अपने आज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग, मुश्किलों में घबराना नहीं है, समाधान ढूंढने हैं उसके लिए सीखिए, बहाने नहीं। आलोचनात्मक सोच, हर बात पर यकीन मत कीजिए, सोचिए समझिए और फिर फैसला कीजिए। अनुकूलन क्षमता, जो समय के साथ

अभी आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर को, फिल्म है प्रेम पर्वत। तो दोस्तों आज की इस प्यारी सी मुलाकात को यहीं देते हैं विराम। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलेंगे कुछ नई बातों और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स के साथ। दीजिए मंजुला को इजाजत, नमस्कार।

आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन। घर आंगन

0: मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
1: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
0: लेफ्टिनेंट जनरल NS राजसुब्रमणी उनका स्थान लेंगे।

फैसले का स्वागत किया है, जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैकाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना में आज लू चल सकती है। उधर बिहार में आंधी, बारिश और बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति दुख व्यक्त किया है और परिजनों को 4 लाख रूपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। गुजरात टाइटंस आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस और रॉयल

एक फिल्म से इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त मनोज और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं साल 1965 की उस हसीन दुनिया में जहां कश्मीर की वादियां थी, मोहब्बत के नगमे थे और थी एक ऐसी आरजू जिसने हर दिल को छू लिया। जी हां, रामानंद सागर की ब्लॉकबस्टर फिल्म आरजू। आइए रेडियो के इस सफर में महसूस करते हैं गोपाल और उषा की प्रेम कहानी।

श्रोताओं, कहानी की शुरुआत होती है कश्मीर। जी हाँ, कश्मीर की खूबसूरत वादियों से। दिल्ली का एक नौजवान, यूनिवर्सिटी का स्कीइंग चैंपियन गोपाल यहां आकर अपना नाम सजो रख लेता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है कश्मीर की कली उषा से।

दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। लेकिन एक रोज बातों बातों में उषा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसने गोपाल के दिल में एक अनजाना सा डर पैदा कर दिया। श्रोता वही हुआ जिसका डर था। गोपाल दिल्ली लौट रहा था कि रास्ते में उसकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने उसकी जान तो बचा ली लेकिन उसकी एक टांग काटनी पड़ी। ये सदमा गोपाल सहन नहीं कर पाया और उसने खुद को उषा की जिंदगी से दूर करने का फैसला किया। उधर कश्मीर में उषा रोज अपने सूरज की राह देखती, रोती और तड़पती।

श्रोताओं, वक्त गुजरता है। गोपाल का सबसे पक्का दोस्त रमेश कश्मीर जा रहा है और वहां उसकी मुलाकात उषा से होती है। रमेश को उषा से प्यार हो जाता है। उषा के पिता अपनी बेटी को डिप्रेशन से निकालने के लिए रमेश से उसकी शादी कर देते हैं। उषा टूट चुकी थी पर पिता की खातिर मान जाती है।

रमेश कश्मीर से दिल्ली लौटकर आता है और अपने दोस्त गोपाल को सारी बातें बताता है। सारी सच्चाई जानने के बाद भी गोपाल अपनी मोहब्बत को अपने ही दोस्त के लिए कुर्बान कर देता है। लेकिन कहते हैं ना कि सच अभी छुपता नहीं है। शादी के मंडप में गोपाल के कश्मीर वाले नौकर ममदू के जरिए रमेश को सच का पता चल जाता है और उषा का सूरज कोई और नहीं बल्कि बैसाखी के सहारे जी रहा उसका अपना दोस्त गोपाल है। इन दोनों के बीच में बातचीत होती है। रमेश कहता है, गोपाल तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? अपनी मोहब्बत की बलि दे सिर्फ इसलिए कि मैं खुश रहूं? क्या इतनी कमजोर है मेरी दोस्ती? वहीं गोपाल कह रहा है कि रमेश मैं मजबूर था, मैं उषा के सामने एक लाचार इंसान बनकर नहीं जाना चाहता था। और यहीं पर उषा दौड़ती हुई आती है और गोपाल को गले लगाकर सिसकते हुए बोलती है, मुझे माफ कर दो सरजू, मैं इतनी नादान थी कि जो जिस्म की अपंगता को ही सब कुछ समझ बैठी। असली अपंगता तो मेरी सुस्त थी। तुम्हारी ये बैसाखियां अब मेरे ये दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है। मुझको खुद से दूर मत करो। और उषा और गोपाल का मिलन शादी के बंधन में बन जाता है। श्रोताओं, इस तरह एक महान त्याग और सच्ची मोहब्बत की जीत हुई। आरजू सिर्फ एक फिल्म ही नहीं बल्कि जज्बातों का वो समंदर है जो आज भी हमारे दिलों को भिगो देता है। चलते चलते सुनिए इस फिल्म का वो अमर गीत जो हमें सिखाता है कि मोहब्बत कभी नहीं मरती।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। यह आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र है। दिन के 1:40 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे इस बुलेटिन नाल मैं रमेश लाल। पहला चुनवीं खबरां। म्यांमार दे राष्ट्रपति भारत के 5 दिना दौरे ते अज बोधगया पहुंच गए ने। कर्नाटक के नवे मुख्यमंत्री की चोण करने लई कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग अज बेंगलुरु विच। फौज मुखी जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय हथियारबंद सेनावां उच्च पदरी चौकसी ने अते लोड़ पैण ते आपरेशन सिंदूर 2.0 लई तैयार ने। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान अज फौजी सेवावां तों सेवामुक्त हो गए ने। लैफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी उन्हां दी थां लैणगे। महिला क्रिकेट विच अज भारत अते इंग्लैंड विचकार दूजा

0: Defense Minister of Netherlands Dylan Jessegol Segerius on the sidelines of the International Institute of Strategic Studies Shangri-La Dialogue in Singapore. In social media post, the Defense Ministry said the talks focused on enhancing bilateral defense cooperation, strengthening military-to-military ties, and exploring opportunities for defense-industrial collaboration, reflecting the growing strategic partnership between India and the Netherlands. The India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy to very heavy rainfall over West Uttar Pradesh, Bihar, Odisha, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and Andaman and Nicobar Islands today. The IMD has also predicted thunderstorm accompanied with hailstorm over Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan, Vidarbha and Chhattisgarh. The Met Department said that northeastern states and coastal Karnataka are likely to experience thunderstorm accompanied with lightning. Heatwave conditions are likely to prevail over West Madhya Pradesh and Telangana. On to sports. In badminton, India's mixed doubles pair Dhruv Kapila and Tanisha Krasto are taking on Japan's Sayaka Hubara and Yuichi Shimogami in the semi-finals of the Singapore Open Super 750 tournament today. The Indian pair secured a semi-final berth after defeating Malaysia's Chen Thang Ri and Toh Ey in the quarter-finals yesterday. Meanwhile, India's men's doubles duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will also be in semi-final action. In women's cricket, India to take on hosts England in the second T20 International in Bristol today, the visitors aiming to seal the three-match series. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian Standard Time. India currently lead the series 1-0 after a commanding 38-run victory in the opening match in Chelmsford on Thursday. And in cricket, Gujarat Titans stormed into the final of the IPL 2026 with a commanding 7-wicket victory over Rajasthan Royals in Qualifier 2 at New Chandigarh last night. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Indian Army prepared for Operation Sindhu 2.0 if the situation warrants, says Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi. Myanmar President U Min Aung Hlaing begins his five-day India visit with prayers at Mahabodhi Temple in Bodh Gaya, Bihar. Karnataka Congress Legislature Party to meet Bangalore this afternoon to elect its new leader. At least 7 people killed in separate incidents of thunderstorms, rain and lightning across Bihar. U.S. Defense Secretary Pete Hegseth says Washington is prepared to resume military action against Iran if efforts to reach a deal fail. And in women's cricket, India to take on hosts England in second T20 International of three-match series in Bristol today. And with that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Lavleen Nigam. सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु 2.0 के लिए तैयार म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउल लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करेगा और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से अब समाचार विस्तार से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर है और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है पुणे के खड़गवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के 150वें बैच की पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया उन्होंने कहा कि यह अभियान अब भी जारी है
2: As far as Operation Sindoor is concerned,
3: जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर की बात है ये अभियान अभी जारी है इसमें फिलहाल केवल अस्थायी रूप से संघर्ष विराम है इसलिए भारतीय सशस्त्र बल ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की संभावना को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर रहे हैं इस समय हमारा ध्यान तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल बनाने पर है साथ ही हम भविष्य के युद्धों के लिए खुद को और अधिक सक्षम बना रहे हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था आने वाले समय के युद्ध केवल जमीन समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहेंगे

0: बी लैंड मैरीटाइम एंड एयर अलोन।
1: जनरल द्विवेदी ने पास आउट होने वाले कैडेटों से व्यावसायिकता नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने का आग्रह किया। सेना प्रमुख ने इस पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होने वाली महिला कैडेटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि साहस, दृढ़ संकल्प और सैन्य उत्कृष्टता लिंग भेद रहित गुण है। अकादमी से कुल 353 कैडेटों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मित्र विदेशी देशों के 21 कैडेटों को भी डिग्री प्रदान की गई। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सैन्य सेवाओं से विदाई ली। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है।
2: मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मुझे तीनों सेनाओं से गार्ड ऑफ ऑनर लेने का अवसर मिला। इसके लिए मैं तीनों सेनाओं और सेना मुख्यालय को धन्यवाद देता हूँ। गार्ड ऑफ ऑनर के समापन के साथ मैं वर्दी में अपने साथियों से विदाई लेता हूँ। मैंने वर्दी में अंतिम बार समर स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। ये उन वीर सैनिकों को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया।
1: लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम जनरल चौहान का स्थान लेंगे। सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सामरिक अध्ययन संस्थान के शांगिला संवाद के दौरान रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने नीदरलैंड्स के रक्षा मंत्री दिलेन एसेलगो जेगेरियस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। यह भारत और नीदरलैंड्स के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों के निवासियों ने केंद्र सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कहा गया है कि सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध ढांचों और अनधिकृत गतिविधियों को हटाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिंट आउट लाइन आज भारत के 5 दिन के दौरे पर बिहार के गया पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी भारत आया है।
3: म्यांमार के राष्ट्रपति आज सुबह 9 बजे विशेष विमान से गया जी एयरपोर्ट पहुंचे। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और अन्य अधिकारियों ने उनका भव्य स्वागत किया। पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति यू मीन आंग हलाइंग विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर और बकरौर स्थित ऐतिहासिक सुजाता मंदिर में पूजा अर्चना किया। साथ ही वे म्यांमार के विभिन्न बौद्ध मठों का भी दौरा किया। राष्ट्रपति के साथ उच्च स्तरीय अधिकारियों और बौद्ध प्रतिनिधियों का एक शिष्टमंडल भी मौजूद था। म्यांमार के राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए महाबोधि मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया जी से धर्मवीर भारती।
1: राष्ट्रपति ऊ मिंट आउट लाइन आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से भी वो मुलाकात करेंगे। म्यांमार के राष्ट्रपति कल म्यांमार भारत व्यापार मंच में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रपति ऊ सोमवार को दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यागत संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने आज शाम बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक करेंगे। इसमें नए नेता का चुनाव किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री डी के शिवकुमार को कांग्रेस विधानसभा पार्टी के नए नेता के रूप में औपचारिक रूप से निर्वाचित किए जाने की संभावना है।
4: आज डी के शिवकुमार राज्यपाल थावर चंद गहलोत से मिले। स्वेयरिंग सेरेमनी के दिनांक और जगह के बारे में चर्चा करने वे लोग भवन गए थे। इस बार युवा विधायकों को अवसर मिलने की संभावना है। अगले महीने राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव होने के कारण जल्दी से जल्दी सरकार बनाने का प्रक्रिया समाप्त करने पर गौर किया जा रहा है। सुधीर, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: कांग्रेस के 136 विधायकों को विधानसभा बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। AICC महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह गुर्जेवाला कार्यवाही का अवलोकन करेंगे। ओडिशा में आज से मतदाता सूची का विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR अभियान शुरू हो गया है। एक महीने तक चलने वाली निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी और इसमें राज्य भर के 3,33,00,000 से अधिक मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत में चुनाव

0: संविधान चुनावी कानून और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराए जा रहे हैं। नई दिल्ली स्थित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन संस्थान में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री कुमार ने बताया कि लोकसभा चुनावों के दौरान पारदर्शिता, जवाबदेही और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1,08,00,000 कर्मियों को तैनात किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की परीक्षा पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि उसके साझेदार TCS की तकनीकी खराबी के कारण आज कुछ परीक्षा केंद्रों पर संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की शुरुआत देरी से हुई। NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट बताया कि समस्या का समाधान हो गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी भी छात्र को असुविधा न हो परीक्षा पूर्ण समय सीमा के साथ आयोजित की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि दोपहर के सत्र का समय संशोधित किया गया है। विद्यार्थियों को दोपहर 2:30 बजे से प्रवेश दिया जाएगा जबकि परीक्षा निर्धारित समय 3 बजे के बजाय 4 बजे से शुरू होगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2023 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन देने के लिए एक निजी कोचिंग सेंटर पर 7,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण ने अब तक कोचिंग संस्थानों को 60 से अधिक नोटिस जारी किए हैं और 1,46,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। स्वास्थ्य शिशु कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जारी किया है। ये सर्वेक्षण 2023-24 में किया गया था। इसमें 715 जिलों के 6,79,000 परिवारों को शामिल किया गया। गोवा ने आज पणजी स्थित कला अकादमी में 40वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर सभा में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने गोवा को एक आदर्श राज्य बताया जिसने विकास और अपनी समृद्ध संस्कृति को संरक्षित रखा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि गोवा इस बात का प्रेरणादायी उदाहरण है कि पहचान और प्रगति साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकती हैं। पणजी के कला अकादमी में गोवा के 40वें राज्य स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा ने आधुनिक विकास को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सफलतापूर्वक संरक्षित रखा है। गोवा केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान, सामाजिक सद्भाव और बौद्धिक खुलेपन से निर्मित एक जीवंत सभ्यता है। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, स्मारक डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किए, पुरस्कार और नियुक्ति पत्र वितरित किए तथा दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना के अंतर्गत बड़ी हुई सहायता का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विकसित गोवा आवश्यक है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ ने कहा है कि अगर समझौते के प्रयास विफल होते हैं तो अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एशिया के प्रमुख सुरक्षा मंच शांग्रीला संवाद में श्री हेक्सेथ ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऐसे अभियान संचालित करने के लिए अमरीका के पास क्षेत्र और दुनिया भर में पर्याप्त सैन्य भंडार मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि देश किसी भी आपात स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री हेक्सेथ ने कहा कि ईरान के साथ संघर्ष में शामिल होने के बावजूद अमेरिका एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनाए हुए है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ 2 घंटे की बैठक की। इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई। सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश

हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ दो घंटे की बैठक की इसमें ईरान के साथ युद्ध विराम बढ़ाने के उद्देश्य से समझौते की संभावना पर चर्चा की गई सिचुएशन रूम में हुई बैठक को स्पष्ट निर्णय लिए बिना समाप्त हो गई मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश

0: प्रकाशित हुआ था रिपोर्ट
1: उदंत मातंड समाचार पत्र के संपादक और संस्थापक पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे उन्होंने हिंदुस्तानियों के हित के हित जैसे अमर संकल्प और भारतीय पत्रकारिता की नींव रखने वाले ध्येय वाक्य के साथ उदंत मातंड समाचार पत्र की कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके से नींव रखी उस दौर में जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था तब हिंदी में समाचार पत्र निकालना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था उदंत मातंड से शुरू हुआ यह सफर आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे बड़ा औजार बना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने जनमानस के भीतर स्वाधीनता का भाव जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई 4 दिसंबर 1827 को उदंत मार्तंड का अंतिम अंक प्रकाशित हुआ जिसमें श्री शुक्ल ने लिखा कि आज दिवस लो उग्यो मार्तंड उदंत अस्ताचल को जात है दिन कर दिन अब अंत समाचार पत्रों से शुरू हुआ यह सफर आज रेडियो टेलीविजन डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया तक पहुँच चुका है हालांकि इस बदलाव के साथ पत्रकारिता की जिम्मेदारियां भी बढ़ी हैं। हिंदी पत्रकारिता दिवस अवसर है उन पत्रकारों और संपादकों को याद करने का जिन्होंने अपने लेखन और साहस से समाज को नई दिशा दी साहस की कलम से किसी ने क्या खूब लिखा है खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो
0: भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज ब्रिस्टल में खेला जाएगा मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा आवश्यकता पड़ने पर भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नौलाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज दोपहर बाद बेंगलुरु में नए नेता का होगा चुनाव बिहार में आंधी बारिश और बिजली गिरने के अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत और महिला क्रिकेट में आज ब्रिस्टल में 3 मैचों की T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से होगा इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ नमस्कार
2: ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି 308.6 meter ତଥା 965 kHz ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଏହି ବିଜ୍ଞାପନ ପରେ

0: जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांव में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।

0: बाजे घुंघरू फिल्म का ये गाना आपने सुना, मोहम्मद रफी, सबिता बनर्जी, सीता और साथियों की आवाजों में, शिवराज श्रीवास्तव का लिखा हुआ गाना, धनी राम का संगीत। अगला गाना बात एक रात की, इस फिल्म का गाना हेमंत कुमार और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है एस डी बर्मन का।
1: लगता है कुछ ऐसा मिल गया

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं, बगदाद की रातें। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन की बोल, संगीत है डी दिलीप का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बनारसी ठग। इस फिल्म का ये गाना है, लता मंगेशकर की आवाज, प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, संगीत है इकबाल कुरैशी का।

इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार अंग में ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। इस कार्यक्रम में हम आपको वो गीत सुनवाते हैं जिसमें हमारे श्रोताओं ने पत्र लिख करके हमें उस गाने को सुनने की फरमाइश भेजी है। तो पहला जो गीत है ये दिल फिल्म का गाना उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना आनंद मिलन का संगीत है। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है शमसुद्दीन की बाड़ी पूरा बीकानेर राजस्थान से। ये पत्र आया है हमारे पास मन्नत खान, समारा खान, मोहम्मद अनजान, सैफ अली, कमाल खान, मरियम बानो और मोहम्मद अली। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

बन जाए गीत कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये अपराध फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में इंदिवर के बोल हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है ग्राम हीवरखेड़ तहसील तेल्हारा जिला अकोला महाराष्ट्र से विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारस पायल श्वेता और उर्वी बेन अड़िया ने।

0: जिला अहमदनगर बालम टाकली से नंद कुमार अदवंत, उर्मिला नीलेश, मयूरी कल्पेश और संगीता अदवंत। आपने जिस गाने की फरमाइश की है वो है मर्यादा फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।
1: तू भी आ जा के आ गई रुत मस्ता

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन 3 बजे।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत। अगला जो गीत है ये खानदान फिल्म का गाना आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल है, संगीत रवि का। ये गीत सुनना चाहते हैं रामलीला मैदान सचेंडी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि त्रिपाठी, मनु मनी, मीत, शिवांश, अनुप सिंह और अभिजीत सिंह। आपकी पसंद का ये गाना सुनिए।

अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कच्चे धागे फिल्म का गाना। 1999 की फिल्म है ये कच्चे धागे। अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, नुसरत फतेह अली खान का संगीत है। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे जिन श्रोताओं ने भेजी है वो है गर्ल्स स्कूल रोड मनिहारी से अवधेश गुप्ता, गोलू, नीलू, विशाल राज और वंशराज। आपकी पसंद का कच्चे धागे फिल्म का ये गाना।

मन चाहेगी कार्यक्रम में अब जिन श्रोताओं की पसंद पर हम ये गीत सुनवा रहे हैं वो हैं रावर कनाल से ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ कालिया। आप सुनना चाहते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना मुकेश और कंचन की आवाजों में, इंदिवर के बोल हैं संगीत कल्याण जी आनंद जी का। आइए सुनते हैं धर्मात्मा फिल्म का गाना।

0: इस गीत के साथ ही आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: प्रस्तुत है नाट्य तरंग। नाट्य तरंग कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं नाटक अग्नि चक्र का पहला भाग। ये है मलयालम नाटक अग्नि वलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। सुनिए इस नाटक का पहला भाग।

0: हेलो
1: जी,
0: इस तरह टकटकी लगाकर आकाश की ओर क्या देख रही हो?
1: आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं?
0: ऐसे ही।
1: मैं भी बस ऐसे ही बाहर देख रही हूँ।
0: क्या नाम है आपका? मेरा मतलब है आप कौन हैं?
1: आप कौन हैं?
0: मैं जेल का अध्ययन करने आया हूँ।
1: और मैं जेल में सड़ने आई हूँ।
0: ये तो देखते ही मर्म हो गया था।
1: लेकिन आपको देखकर मुझे कुछ भी मालूम नहीं हुआ। आप कौन हैं?
0: मैं नाटककार हूँ। मैंने मलयालम भाषा में कई नाटक लिखे। इस बार मैंने जेल की पृष्ठभूमि पर नाटक लिखने का निश्चय किया। इसी सिलसिले में आपके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ।
1: आप दूसरे कैदियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं?
0: कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं।
1: मेरा नाम डेजी है।
0: डेजी?
1: क्या हुआ?
0: मुझे कुछ याद आ रहा है।
1: क्या?
0: कुछ महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा था डेजी नाम की युवती को सेशंस जज ने सजा दी थी। आप वही डेजी हैं?
1: हाँ।
0: आपने हाईकोर्ट में अपील नहीं की?
1: अपील तभी की जाती है जब सजा पाने वाले को कोई शिकायत हो।
0: आपकी बातें बड़ी विचित्र लग रही हैं।
1: मेरी कहानी भी बड़ी विचित्र है।
0: क्या आप इस सब के लिए अपने को दोषी मानती हैं?
1: दोष परिस्थितियों का है या मेरे भाग्य का, जिसने मुझे उन परिस्थितियों में डाल दिया, कह नहीं सकती।
0: आपकी कहानी जानने के लिए बहुत उत्सुक हो उठा हूं। क्या आप?
1: हाँ, मैं सुना।

0: ये आपको अपनी कहानी। एक साधारण देहात के गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। मैं छोटी ही थी कि मेरे पिता चल बसे। खेतों में मजूरी करके और इधर उधर के छोटे मोटे काम करके मेरी मां ने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया। हायर सेकेंडरी की परीक्षा मैंने फर्स्ट डिवीजन में पास की। मैं चाहती थी कि पढ़ाई जारी रखूं और कोई डिग्री डिप्लोमा ले लूं। संयोग से तभी एक वैभव संपन्न युवक बेनी से मेरा परिचय हुआ। उन्होंने मुझसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बेनी देखने में सुंदर ही थे, रंग भी उनका काला था, किंतु मन से वो बहुत सुंदर थे। हम दोनों का विवाह हो गया। बेनी ने मुझे इतना प्यार और सम्मान दिया कि विधाता को जैसे मेरे सौभाग्य से ईर्ष्या होने लगी। एक दिन सदा उनकी छाती में एक विचित्र ही प्रकार का दर्द उठा और वो बेहोश होकर गिर पड़े। जब उन्हें इस तरह के दो तीन अटैक और हुए तो उन्हें मर्सी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया।
1: डॉक्टर रामदास, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर,
2: गुड मॉर्निंग बेनी, गुड मॉर्निंग।
1: कौवी तबीयत कैसी है?
2: बीच बीच में कभी कभी सीन में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन थकान बहुत है डॉक्टर।
1: चिंता की कोई बात नहीं, अब डॉक्टर लॉरेंस तुम्हें एग्जामिन करेंगे। वो आज छुट्टी से वापस आ रहे हैं।
2: क्या ऑपरेशन होगा डॉक्टर?
1: क्यों, ऑपरेशन से डर लगता है क्या?
2: नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था।
1: क्या करने से तुम्हें आराम होगा ये निर्णय वही लेंगे। उन्होंने विदेश में शिक्षा पाई है और सर्जरी में स्पेशलाइजेशन किया है। ये क्या, गिटार? गुड, इतना मधुर स्वर है इसका। बेनी, इसे बजाना आता है क्या?
2: डॉक्टर, किसी गुरु से तो शिक्षा नहीं ली है, फिर भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूं।
1: बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है।
2: एक तरह से इसमें मेरी जान बसती है।
1: अच्छा,
2: अपनी पत्नी के बाद मैं इसी को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। पत्नी जीवन में प्रेम भर देती है और गिटार मधुरता।
1: तो दोनों ही दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हुए, क्यों?
3: नमस्ते डॉक्टर।
1: ओ नमस्ते,
2: कहां गई थी तुम?
3: सुना था कि डॉक्टर छुट्टी के बाद लौट आए।
2: अच्छा, तो तुम जल्दी से उनका पता लगाने गई थी।
1: मेरी पत्नी जी ठहरी, उत्कंठा हो सकती है। डेजी, ये टॉनिक किसके लिए लाई?
2: हम दोनों के लिए।
3: नहीं डॉक्टर, सिर्फ इनके लिए।
2: इसकी बात पर ध्यान ना दीजिए डॉक्टर, खाएंगे तो हम दोनों एक साथ ही खाएंगे, वरना।
1: अच्छा अच्छा, मेरा वार्ड हॉल, फिर मिलेंगे।
2: अच्छा,
3: तुमने डॉक्टर रामदास को ये सब क्यों बताया कि हम एक साथ खाते हैं? ऐसे हम वैसे,
2: इसमें हर्ज क्या है? सच तो यही है ना?
3: सच होने पर भी अपनी बातों को दूसरों के सामने जरा खुल्लम खुल्ला क्यों कहते हो? मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी।
2: इसमें शर्म का है कि क्या? मुझे ये कहना चाहिए था कि हम दोनों में झगड़ा रहता है। देखो डेजी, सत्य किसी के सामने किसी भी समय कहा जा सकता है।
3: अच्छा जी, तब तो एक काम करें, इस कमरे के बाहर एक बोर्ड लटका दें। इस कमरे में रहने वाले पति पत्नी एक दूसरे के गहरे प्रेम में डूबे हुए हैं।

0: देसी, कल डॉक्टर रामदास ने हमसे एक सवाल पूछा था, तुम्हें ख्याल है?
1: क्या?
0: हमारे बच्चे हैं या नहीं?
1: हाँ, ख्याल है।
0: मुझे याद है ये सवाल सुनते ही तुम उदास हो गई थी।
1: नहीं तो?
0: नहीं?
1: हाँ, शायद। बेनी, बेनी तुम अच्छे हो जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बेनी,
0: तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊँ?
1: हाँ बेनी, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे अच्छे बेनी।
0: ए, देसी, इधर हो ना।

0: Vieni, gli aspetta lei.
1: Ciao, Anna.
0: Vieni. Vieni, ciao.
1: Drazzore.
0: Ma non so come la fila. Lì è giovane. Lì è giovane. Are tu pare tu ci per passinare?
1: Ne. Fekno kuro. Zara singe din se. Cinta ki koi baat nahi.
0: Ne. Main doctor ko bula lati.
1: Kutte ji.
0: Bini. Ek baat batao.
1: Poocho.
0: तुम्हें सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है, गिटार या मैं?
1: बताऊं? दोनों।
0: मेरा मतलब है कि तुम्हें सबसे अधिक सुख किस मिलता है?
1: तुम्हें निहारते हुए गिटार बजाने में।
2: तो आप कलाकार भी हैं?
1: कलाकार तो नहीं, लेकिन कला प्रेमी रोगी हूँ। आप
0: डॉक्टर लॉरेंस है ना?
2: हाँ, मैं डॉक्टर लॉरेंस हूँ।
3: तुम बेनी हो ना?
1: हाँ, डॉक्टर तुम लॉरेंस हो ना?
3: हाँ, मैं लॉरेंस हूँ।
1: माय गुडनेस, तुमसे अचानक मिलकर मुझे कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता।
3: और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है।
1: मैं तो तुम्हें पहचान नहीं सका।
3: और मैं ही तुम्हें कहाँ पहचान पाया नहीं।
1: कुछ भी हो, तुम यहाँ अस्पताल में मेरे डॉक्टर के रूप में, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैंने सुना की अमेरिका से फेमस डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर लॉरेंस, तो सोचा की जरूर कोई कॉम्पिटेंट डॉक्टर होंगे।
3: क्या मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ?
1: मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा की तुम मेरे वही पुराने दोस्त लॉरेंस हो। सुनो, हमें एक दूसरे से मिले कितने साल हुए होंगे?
3: यही कोई 14 या 15 साल।
1: और तुम मुझे देख भी पहचान गए, खास तौर पर इस हालत में।
3: एग्जैक्टली,
1: जब की यादाश्त है तुम्हारी। मैं परिचय तो करवाई नहीं। लॉरेंस, मेरी पत्नी डेज़ी।
3: नमस्ते। नमस्ते, तो मैं देखते समझ गया था
0: आप आ गए हैं, तो लगता है
3: जैसे। सब वो बात रहने दीजिए। अब बेनी, पहले बताओ तुम्हें तकलीफ क्या है?
1: टेस्ट में पेन है, दिल की तरफ भी पेन है।
3: वैसे
1: सांस लेने में अक्सर बड़ा कष्ट होता है।
0: ये ठीक से नहीं बताते। बस यही कह रहे थे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं, इनकी आदत।
3: हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। स्कूल में हम 3 साल एक साथ पढ़े हैं। डेज़ी
0: जी,
3: मैं इन्हें ठीक करने में कोई कसर नहीं रखूंगा, जो भी जरूरी होगा जरूर करूंगा।
0: थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर, आप इनकी बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं?
1: डेज़ी, मेरे सारे रोगों की लिस्ट तुम ही दे दो। लॉरेंस, मैंने अपने को डेज़ी के सुपुर्द कर दिया है।
3: बेनी, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारा कोई तो है जो तुम्हारी हर बात की तरफ ध्यान दे रहा है।
1: हाँ, हूँ सौभाग्यशाली, लेकिन 24 घंटे की देखभाल से मेरा दम घुट रहा है।
3: खुद सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इस पर देखभाल से भी दम घुटने लगे तो। हाँ। खैर, जो भी हो भाई, बेनी तुम्हारा कंप्लीट चेकअप करना होगा। अभी तो मैं वार्ड जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। सही हो गया ना?
1: बाय।
0: भगवान की बड़ी कृपा है जो डॉक्टर लॉरेंस को यहाँ भेज दिया।
1: ये फ्लास्क क्यों ले रखा है?
0: अरे बाबा, मैं तो पानी गर्म करने को रखाई थी, शायद गर्म गया होगा। मैं आ जाकर ले आती। सो रहे हैं क्या?
1: अरे गिरिजा, तुम?
0: आप यहाँ?
1: हाँ, मैं एक बीमार की हैसियत से आया हूँ। सीने में और दिल में दर्द है।
0: दिल में दर्द? जिसके दिल ही नहीं उसके दिल में दर्द?
1: जरा शिष्टता से बात करो।
0: जो शिष्टता का मतलब ही नहीं समझता, वो कह रहा है शिष्टता से बात करो।
1: सर, आज तो बोलो।
0: मुझे पहचान लिया आपने?
1: हाँ, पहचाना ही नहीं, इस दौरान बीच बीच में तुम्हें याद भी किया है।
0: अब भी मन में विष भरा है, तुझे विचारों का विष।
1: तुम ऐसा सोचती हो?
0: सोच नहीं, बल्कि अनुभव से कहती हूँ। मुझे देख पाने इसकी आपने अभी कल्पना भी

0: मेरे पिताजी बीमार पड़े थे, उनके प्राण बचाने का कोई उपाय नहीं था। मैं नौकरी की तलाश में आपकी संस्था में गई तो आपके दुष्ट मैनेजर ने मुझे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की। मैंने बाघिन की तरह उसका सामना किया, मेरे कपड़े फट गए लेकिन वो भाग गया। उसके बाद कमरे में घुस आए आप, लेकिन मैं आपके चंगुल से भी भाग निकली।
1: देखो मेरी पत्नी सुन रही होगी, प्लीज प्लीज चुप हो जाओ।
0: हो तो मुझे आपकी पत्नी से डरना होगा।
1: प्लीज प्लीज मुझे माफ करो, इस समय कुछ ना।
2: उस दिन मैंने गिरजा और बेनी की बात सुन ली थी, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहा। उस रात बेनी कुछ अस्वस्थ रही। दूसरे दिन डॉक्टर लॉरेंस ने बेनी का कंप्लीट चेकअप किया। दो तरह के एक्सरे लिए, ईसीजी लिए, ब्लड और यूरिन टेस्ट हुए। रिजल्ट आने के बाद ही वो कुछ बता सकेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। उन दिनों जब भी मुझे फुर्सत मिलती मैं पास के चर्च में जाकर बिनी की जल्दी ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन मैं चर्च से लौटी तो सुना बेनी और गिरजा बातें कर रहे थे।
0: मुझे कुछ नहीं कहना।
1: लेकिन मुझे तो कहना है, कल यहां बात रुक गई थी, मैं वहीं से शुरू करता हूं।
0: मैं कुछ सुन नहीं चाहता।
1: तुम्हें सुनना पड़ेगा। सुनो, तुम जब आई थी मैं ऑफिस में नहीं था। तुम्हारे साथ जो ज्यादती हुई वो मुझे मालूम है। तुम्हें समझा बुझा कर शांत करने और तुमसे माफी मांगने के लिए मैं दौड़ा दौड़ा आया था, लेकिन तुम न जाने क्या समझी और मेरी बात सुने बिना चली गई। मैंने आवाज दी मगर तुमने मेरी तरफ देख तक नहीं। तुम कौन हो ये मैं तुम्हारी एप्लीकेशन पढ़कर ही जान गया था।
0: हाँ चाहते हैं मैं इन सब बातों पर विश्वास करूं?
1: नहीं, मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें सच बता दिया है, बस मेरे लिए इतना ही काफी है।
0: आप इतने ही सच्चे और भले मानस होते तो मुझे बुलाकर नौकरी ही नहीं दिला देते।
1: लेकिन उस बीच कुछ ऐसी विचित्र घटनाएं हुई कि मुझे इसका अवसर ही नहीं मिला। उसी दिन मैनेजर को नौकरी से हटा दिया गया, बाद में मैंने वो ऑफिस बंद कर दिया। आज ना वो संस्था है ना वो ऑफिस।
0: अच्छा।
1: हाँ ये बताओ, तुम्हारे पिता ऑपरेशन के बाद भी कई दिन अस्पताल में रहे थे या नहीं?
0: हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ?
1: कितने रुपए खर्च हुए?
0: कल 600, लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति पर तरस खाकर अस्पताल वालों ने वो रकम माफ कर दी थी।
1: माफ नहीं की थी गिरजा, सारी रकम मैंने चुकाई थी। तुम्हें बिना सूचना दिए चेक भेज दिया था। चाहो अब भी पता लगा सकते हो। डिस्चार्ज होकर बाहर जाते वक्त तुम्हारे पिता के हाथ रुपए भी मैंने रखवा दिए थे।
0: क्या?
1: हाँ, मैंने सब तुम्हारे लिए किया था। तुम्हारी वेदना देखकर मेरा मन दुखी हो उठा। मुझे लगा कि तुम्हारी इन मुसीबतों के लिए मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं, इसलिए मैंने ये सब किया। फिर एक दिन सुना तुम और तुम्हारे पिता दोनों ही कहीं चले गए। उसके बाद कल तुम्हें देखा।
0: मैं ये सब नहीं जान पाई, गलती हो गई, मुझे माफ करें।
1: माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं गिरजा, मैंने जो कुछ भी किया वो अपना कर्तव्य समझकर किया। चेहरा कुरूप होने पर भी मेरा मन कुरूप नहीं।
2: गिरजा चली गई, लेकिन उनकी बातें सुनकर मेरे मन में बेनी के प्रति कितनी श्रद्धा, कितना आदर, कितना प्यार और उमड़ आया।

0: पेशेंट को देखने आता है, पेशेंट बेड पर नहीं मिलता।
1: इस पैकेट में क्या है?
2: बता दूंगा, पहले ये बताओ मेरी रिपोर्ट्स देखकर तुमने क्या डायग्नोस किया है?
0: मेरी रिपोर्ट सब ठीक है, घबराने कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़े।
2: कोई गड़बड़ है डॉक्टर?
0: भाई गड़बड़ कैसी, डोंट वरी, मैं हूँ, आई विल डू माई बेस्ट।
2: लॉरेंस, ये बात इस डेजी से कहते हो, इसी को ज्यादा डर लग रहा है। डेजी, अब तुम्हारी परेशानी दूर हुई ना?
0: और हाँ बेनी, एक बात और, इस तरह कमरा छोड़कर बाहर जाना ठीक नहीं है, आई डोंट लाइक इट। अच्छा तो मैं चलता हूं अब, सी यू अगेन, बाय।
3: तुम तो चेरियन से मिलने गए थे बेनी, ये पैकेट कहां से उठा लाए?
2: तुम्हारे लिए एक चीज है।
3: अच्छा, देखो तो।
2: लो, देख लो।
3: साही, ये अब काय को, और यहां
2: मेरी ओर से प्रेजेंट।
3: प्रेजेंट?
2: हाँ, तुम्हें याद है आज तुम्हारा जन्मदिन है, भूल गई? लो, मेरी डेजी के लिए जन्मदिन का प्रेजेंट है। तुम उदास नजरों से मुझे घूर क्यों रहे हो? लो ये रख लो।
3: इतना स्नेह जताकर तुम क्यों मेरा दम घोट रहे हो? बेनी, हमें एक दूसरे के लिए इतना अधीर नहीं होना चाहिए।
2: हाँ, ऐसा मुझे भी लग रहा है, तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था, तुम्हें इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए था। खैर, साड़ी पसंद आई?
3: तुम्हें अस्पताल में साड़ी नहीं लानी चाहिए थी।
2: अब अगर मैं और मौका न पाऊं तो? तुम तो बड़े ना समझो, तो अगर ऐसे ही रही ना तो फिर चल गया काम। प्रेजेंट देखकर रोने लगी? नहीं नहीं नहीं, रो मत। देखो, अगर और ज्यादा रोगी तो मैं रूठ जाऊंगा। बोलो, रूठ जाओ? नहीं नहीं ना? अच्छा तो फिर हंस दो। देखो, ये ऐसे ऐसे।
3: अरे, क्या क्या हुआ आपको? ले गए, ले गए ना। बेनी, बेनी, बेनी, डॉक्टर, कुछ ही मिनटों के अंदर डॉक्टर लॉरेंस दौड़ कर आ गए। दूसरे ही दिन बेनी का मेजर ऑपरेशन हुआ। भगवान की कृपा से

0: जमीन पर गिर पड़ी और फिर मुझे किसी बात की सुध नहीं रही। पांव बाद मुझे होश आया, मैं बीमार पड़ गई। जिस कमरे को मेरे पति खाली कर गए थे, मैं उसी में भर्ती हो गई। 2 महीने बीत गए। एक दिन नर्स गिरजा मेरे पास आई।
1: डेजी, ये सब क्या है? छोटे बच्चों की तरह?
2: ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं होता गिरजा।
1: दुख मुझे भी है डेजी, मैं भी उनको नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किया।
2: मैं अब क्यों जीवित हूं गिरजा? चिराग बुझ गया, रोशनी खत्म हो गई, मेरे सामने अब अंधेरा ही अंधेरा है।
1: ना डेजी, इस अंधेरे से तुम्हें बाहर निकलना ही होगा। उठो, हाथ मुंह धो लो, हमेशा रोना धोना अच्छा नहीं। चलो देखो, देखो इससे तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तेरी अच्छा, अब मैं चलती हूँ, ड्यूटी खत्म होने पर आऊंगी, तब हम देर तक बैठ बातें करेंगे।
0: इस तरह कुछ महीने और बीत गए। डॉक्टर लॉरेंस मेरी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार रहते थे। बेनी के प्रति वे बहुत स्नेह प्रदर्शित करते थे। और एक दिन सब लोगों को आश्चर्य में डालकर हम, मैं और लॉरेंस, विवाह सूत्र में बंध गए।
3: अच्छा?
0: लेकिन इस सब के बावजूद भी बेनी मेरे अंदर जीवित रहे। उनका प्रिय विचार मैंने संभाल कर रख लिया था। एक दिन की बात है,
4: आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का पहला भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवर्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति। इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में।
5: 2 जून, सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। 2 जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
6: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
5: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती राष्ट्रीय सेवा हमेशा आपके लिए कोई ऐसे व्यक्तित्व को लेकर आती है जो आपसे बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। हमारे श्रोता जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, और आज एक ऐसी अभिनेत्री हमारे समक्ष है जिनको देखकर न जाने कितने दिलों ने ये सोचा होगा कि काश हम भी ऐसे ही होते, या हमारे परिवार की बेटियां, बहुएं सभी ऐसी ही होती। हर कोई ये विचार कर रहा था, वो मिट्टी की खुशबू, वो जिंदगी, वो किरदार, वो अभिनेत्री जो उस समय भी उतनी ही खूबसूरत थी और आज भी वही रूप, वही रंग और वही यौवन हमें दिखाई दे रहा है। आज हमारे सामने है, अच्छा श्रोताओं चलो एक प्रश्न पूछती हूँ। एक डायलॉग बड़ा खूबसूरत सा था, चंदन काहे का हम अच्छी लड़की नहीं है, ये किस फिल्म का डायलॉग था जरा विचार कीजिए। हाँ वही फिल्म जिसमें हमने होली की धुन पर भी नाचा है और गांव की एक प्यारी सी लड़की की चूहलबाजी, मस्ती और बहुत सारी शैतानी को भी देखा है, और वही मस्ती खोर बड़ी प्यारी सी खूबसूरत सी अभिनेत्री हमारे बीच में है और नाम है साधना सिंह जी। मैं मंच से इस प्यारे से विविध भारती से आपका इतने प्यार से स्वागत करती हूँ।
1: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आज पूरा विविध भारती परिवार इतना प्रसन्नचित है आपको पाकर क्योंकि उन्हें उनकी गुंजा सुनने को मिल रही है।
1: बिल्कुल,
0: मैंने जब जिक्र गुंजा का कर दिया है तो गुंजा से ही शुरू करते हैं। गुंजा जो है वो बहुत बदमाश भी है और कहीं मिर्ची इसके खिला देती है कहीं पानी खा के चली जाती है, कभी बाबा की डांट भी खाती है तो माँ के सामने झिझक निकल भी जाती है, और वही गुंजा जो है वो एक समय पे आके उदास भी हो जाती है अपने परिवार के लिए, बहन के लिए, अपने

0: बात है, वो गुंजा का जो किरदार रहा है आपका, जो आपने किया है, उसमें बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही थी, यानी ऐसी ही फिल्में आ रही थी जो बहुत सेंसिटिव थी, लोगों के दिलों को छू रही थी, और उन फिल्मों के बीच में सन 1982 में नदिया के पार अपना एक अलग मुकाम बनाया। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि नदिया के पार करते समय या उसके पहले क्या आपने उसके बारे में पढ़ा था, पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, या बस नेचुरली उतर गई थी मैदान में?
1: हाँ नहीं, उतर ही गई थी क्योंकि कहीं मैंने वो एक्टिंग सीखी नहीं
0: अच्छा
1: और कोई स्पेशल कोर्स नहीं कराया दादा ने मेरे साथ।
0: जी
1: उन्होंने बस एक ही चीज बोली, तुम जैसी हो वैसे ही रहना, ठीक है।
0: अच्छा
1: और लेकिन बावजूद उसके मुझे लगता था कि नहीं, एक्टिंग कर रही हूँ मैं, कहाँ करूँ एक्टिंग, कहाँ करूँ, मुझे समझ नहीं आया शुरू में। तो जब शूटिंग खत्म हो गई, मैंने कहा दादा एक्टिंग ही कराई आपने, तो बोलते बस तुम दिखना पर्दे पे, इसी को एक्टिंग बोलते हैं। तो मुझे इतना आइडिया भी नहीं था क्योंकि दिमाग में था ही नहीं कि एक्ट्रेस बनना है,
0: जी
1: लेकिन चलिए जो बने। लेकिन उन्होंने देखा मुझे 14-15 दिन
0: जी
1: ऑब्जर्व किया,
0: जी
1: तब जाके उनको लगा यही मेरी गुंजा है।
0: अरे वाह,
1: हाँ
0: तो साधना में उन्होंने गुंजा ढूंढ ली। जब आप छोटी थी तो आप क्या चाहती थी? आप अभिनेत्री, आपने अभी बोला कि आपको पता नहीं था कि आप
1: हाँ
0: अभिनेत्री बनेंगी,
1: हाँ
0: तो साधना जी क्या बनना चाहती थी?
1: मुझे पैशन तो सिंगिंग का ही था,
0: अच्छा
1: तो लोग भी मुझे एज ए सिंगर ही जानते थे। कानपुर में मैं थी तो उनके हिसाब से मैं सिंगर ही थी, और टीचर्स भी बहुत प्यार करती थी क्योंकि जैसे ही उनका ब्रेक होता है ना, लंच ब्रेक वगैरह, तो बोलती थी बुलाओ उस साधना को, और सब खा रही और मुझे बोल रही वो वाला गाना सुनाओ, अभी वो वाला सुनाओ, फरमाइशी चल रहा था गीत। तो इस वजह से मेरी बड़ी गलतियां माफ कर दी जाती थी
0: अरे
1: स्कूल में भी, कि ठीक है जो भी है गाना तो गाती है ना, तो या कुछ क्योस होता था तो बोले साधना को बोलो माइक पे आए जल्दी।
0: अच्छा
1: हाँ तो ये था, रुतबा था मेरा अपना।
0: तो अच्छी बात है, लेकिन आपने एक जिक्र किया कि आपके सामने माइक रखा जाता था और कहा जाता था कि साधना
1: हाँ
0: गाओ, लेकिन अभी आप अपनी पसंद का कोई गीत बता दीजिए जो हमारे श्रोताओं को सुना रहे। कौन सा ऐसा गीत है जो पहला गीत आप सुनना चाहती हैं आपके साक्षात्कार के साथ?
1: देखिए मैं आपको बताऊं, मैं 3 साल की थी, 3 साढ़े 3 साल की, जब मैंने अचानक एक गाना गाया। उस समय तो रेडियो होते थे और मेरी मम्मी ने पूरे मोहल्ले को बुला लिया, मेरी बेटी देखो गाना गा रही है, मेरी बेटी गाना गा रही है। वो गाना था तेरा मन दर्पण कहलाए, है
0: आह क्या
1: ना।
0: खूबसूरत गीत है।
1: तो शुरुआत मेरी उससे हुई और फिर बस गाने लगे, और मतलब एज ए सिंगर छाने लगी। उस समय आवाज अलग थी मेरी, मतलब आप 50,000 लोग खड़े कर दीजिए उन तक पहुंच सकती थी,
0: उतनी बुलंद आवाज
1: हाँ
0: थी
1: बुलंद आवाज थी।
0: जी। तो जब पसंदीदा गीत है और 3 साल की उम्र में जब छोटी सी साधना ने पहला गीत गाया है, तो वो गीत हम आपको विविध
1: हाँ
0: भारती परिवार की तरफ से उपहार स्वरूप देना चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल, थैंक यू।

0: अच्छा साधना जी, आपने बताया कि 3 साल की उम्र में आप गा रही थी, आप हालांकि आप आज भी बहुत खूबसूरत हैं, तब तो बड़ा की खूबसूरत रही होंगी, तो लोगों का प्यार करना बनता है, उसे कोई दोष नहीं है, और मैं शायद गलत नहीं हूं कि आपने मंच में नृत्य अभिनय बहुत सारे काम स्कूल में जो होते हैं वो भी शायद
1: हाँ,
0: किए होंगे।
1: मैंने नृत्य कभी नहीं किया,
0: अच्छा
1: वो मेरी बहन करती थी, तो
0: अच्छा
1: मेरे माइंड में आ गया कि वो डांस कर रही है तो मैं गाने में ठीक हूँ,
0: अच्छा
1: लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गया मेरी बॉडी में या कुछ, तो वो कथक करती थी बहुत जबरदस्त, बिरजू महाराज की बहुत फेवरेट ये थी डिसाइपल, और बिजली की तरह नाचती थी वो, तो कहीं ना कहीं कथक मेरे अंदर कुछ ना कुछ भाव उसके रह गए।
0: अच्छा
1: अब अफसोस की बात यह कि उनको अर्थराइटिस हो गया, तो फिर एक डांसर के लिए अर्थराइटिस हो जाना,
0: बहुत दुखद घटना है जी।
1: तो मतलब टीचर्स भी बोलती थी तुम तो स्कूल में गाना गाती थी, और हम लोग का एनुअल फंक्शन में हमेशा मना कर देती थी कि मैं डांस नहीं करूंगी, लेकिन था तो है अंदर
0: नहीं, आप बहुत अच्छा नृत्य की हैं उस जगीरा में, और हमने देखा
1: जोगीरा
0: बड़ा
1: में
0: अच्छा।
1: मार खा के की हूँ
0: अच्छा वो किस्सा भी जरूर बता
1: नहीं
0: दें
1: वो ये था, बद्री जी थे
0: जी।
1: हमारे डांस डायरेक्टर,
0: जी
1: तो गाना तो बड़े मजेदार था। हाँ,
0: हाँ
1: और शीला जो है वो पूरी ट्रेन डांसर थी, तो
0: अच्छा
1: मैं तो
0: हाँ
1: नहीं थी, तो उसमें एक स्टेप है ना ना थोड़ा मुश्किल स्टेप, ऐसे करके ताली एकदम
0: जी
1: और घूम के आना था,
0: जी
1: मुझसे हो नहीं रहा था कि माइंड अटक गया था, मैंने कहा मैं नहीं करूंगी ये, तो बद्री जी से मैं कहती थी कुछ चेंज नहीं कर सकते इसमें, कुछ चेंज नहीं कर सकते, बोलते हैं 3 4 दिन उन्होंने देखा ये ऐसे बदतमीजी करती जा रही है, तो एक बार आएगा आज तुमको डांस आएगा देखना, लेकिन डंडा मारा पैर में एकदम ठीक कर दिया मैंने
0: अच्छा एक
1: आपको
0: डंडे में डांस हो गया
1: तो कई लोग ऐसे भी होते ना कि लातों के भूत, क्या कहते हैं
0: लाठी के भूत
1: लाठी के भूत, मारा पैर में बड़ी जोरों से लगी, मैं कर लूंगी
0: बद्री जी को धन्यवाद कि उन्होंने इतना खूबसूरत स्टेप तक
1: और
0: पहुंचाया।
1: क्योंकि शीला बहुत अच्छा कर रही थी
0: हाँ
1: तो मैं देखी रहती थी, बड़ा मटक मटक के डांस किया उसने, फिर मैंने कोशिश की तो हो गया।
0: बहुत खूब किरदार को निभाया, बहुत खूब नृत्य किया आपने, मैं नहीं पता था कि आपको उसमें डंडा पड़ा है, पर मैं डंडे को भी प्रणाम करती हूँ जिस डंडे ने इतना खूबसूरत नृत्य करवाया। अभी नदिया के पार फिल्म में आप आई, और बहुत सारी जगह बहुत सारे अलग अलग भाव आपने दिखाए हैं, कहीं आप उसके प्रेम में भी हैं और अगले ही पल आप चंदन को परेशान भी कर रही हैं, तो ये जो भाव बदलने की जो क्रिया थी, आपने अभिनय सीखा नहीं,

0: किया कि दादा बोलते थे जो मर्जी आए करो।
1: अच्छा
0: हाँ ये है, ये फ्रेम है, ये सचिन ने भी हेल्प की समझने के लिए कि हिलना नहीं पड़ता, पता चला तुमको बोलते हैं राइट तो चली जाती हो एकदम बाहर कैमरे की, तो यही। और दूसरा वो उसके जो डीओपी, हाँ उनको बड़ी खुन्नस थी मेरे से, तो वो सीधे नहीं, इतना सा बोलो तो 10 गुना आगे चली जाती है, इसको सिखाओ। तो
1: अच्छा
0: दो तीन चीजें ये सीखी कि लाइटिंग लेना है, अच्छा थोड़ा अगर इधर बोला इतना ही जाना है, ऐसे सेल फ्रेम की बारी चली जाती थी। तो वो नेचुरली था, अंदर तो आ गया,
1: जी।
0: मैंने कुछ उसमें पुट ऑन करने की मतलब कोशिश ही नहीं की।
1: अभी बहुत सारे बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपको खैर अभी बहुत बरस हो गए इस अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय की दुनिया में, आप उन नए बच्चों को क्या कहना चाहती हैं इस विषय में?
0: मुझे लगता है कि पहली बात, एक्टिंग ऐसी चीज जो सिखाई नहीं जा सकती, कि आप पैसे लेके आ रहे हैं अपने घर से बॉम्बे में सीखेंगे एक्टिंग, वो नहीं, जर्म्स अंदर होने चाहिए, तो वो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ज्यादा हो गया कम हो गया, पर जो चीज है ही नहीं आपके अंदर, और सिर्फ शक्ल के उससे कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूं या सुंदर लग रहा हूं, चले आते हैं मतलब पुटली उठा के माँ बाप का पैसा लेके, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले खुद को जज करें, समझें अपने आप को। हो सकता है बहुत अच्छे एक्टर हो जाएं, लेकिन ये सोच के आना कि नहीं मैं अब जा रहा हूँ हीरो बनने या हीरोइन बनने, वो गलत, बहुत गलत है। और माँ बाप साथ में नहीं होते हैं, फिर आप गलत राहों पे चलने लगते हैं।
1: जी, तो थोड़ा सा खुद को परख के, ऐसा आपका कहना है।
0: हाँ
1: और सुंदरता बस जरूरी नहीं है अभिनय के क्षेत्र में, अभिनय
0: बिल्कुल
1: भी जरूरी है। ये तो बहुत अच्छी बात हमें आपसे पता पड़ी। इसके साथ ही एक और बड़ी खूबसूरत सी अदायगी मुझे ये लगी कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फिल्मों में काम कर रही हूँ, मैं टीवी सीरियल्स में काम कर रही हूँ, तो
0: हाँ
1: मैं फिल्मों में कर रही हूँ तो मैं टीवी में क्यों करूँ।
0: हाँ ऐसा
1: एक
0: तो
1: ये
0: कुछ
1: ईगो
0: नहीं,
1: भी सामान्य लोगों में
0: हाँ
1: होता है कि
0: होता
1: हमने
0: है।
1: किया है,
0: हाँ
1: तो इसके लिए आपने अपने मन को तैयार किया या
0: नहीं कुछ तैयार
1: नहीं?
0: नहीं किया, मुझे पता था मीडिया है ना,
1: हाँ
0: वो भी एक्टिंग ही चाहता है
1: जी
0: ना, हमको वहां भी लाइनें याद करनी होंगी,
1: जी
0: लेकिन वो पीयर प्रेशर एक होता है, वो कौन ले पाता है कौन नहीं ले पाता। नहीं तो एक्टिंग तो कहीं हम अगर सड़क पे खड़े होकर प्ले करते हैं तो थोड़ा लाउड करते हैं, क्योंकि हमको पता है वो अपनी समझ है
1: जी
0: ना, कि यहाँ पे बहुत सेंसिटिव कुछ आवाज नहीं आ रही, मैं चिल्ला चिल्ला के बोलने लगूं,
1: जी
0: तो अल्टीमेटली मैंने पाया कि एक्टिंग नहीं करना ही एक्टिंग है,
1: अच्छा, एक्टिंग नहीं
0: नहीं
1: करना ही
0: करना है।
1: एक्टिंग है।
0: हाँ तो मैं तो इतनी बड़ी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं किसी को बोल पाऊं, ये आपने पूछा तो मैं बता रही हूँ कि
1: हाँ जी, हमारे समक्ष बैठी हैं साधना सिंह जी, और अभी हम इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साधना जी हम तो रेडियो वाले हैं, हम गाना सुनाते हैं, तो
0: हाँ
1: मौका है, दस्तूर भी है कि आपकी
0: सुनाई।
1: पसंद सुन ली जाए
0: अच्छा ऐसा
1: जी, तो कोई गीत बता दीजिए जो।
0: मोस्टली मुझे रोमांटिक और बिजी सॉन्ग या स्लो सॉन्ग सच लगता है,
1: जी
0: तो कुछ दिल ने कहा, और ऐसी भी बातें होती हैं,
1: वो उसका संगीत कितना खूबसूरत है
0: खूबसूरत
1: ना।
0: और
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: मीठा संगीत है।
1: तो हमारे श्रोताओं को सुनाते हैं खूबसूरत सा नगमा।
0: कुछ दिल ने सुना कुछ भी नहीं।

0: ये खूबसूरत सा कार्यक्रम चल रहा है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक बेहतरीन प्यारी सी अभिनेत्री के साथ में, वो अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए हैं और जो भी जीवन में आया है उसे मुस्कुराते हुए सब करती गई हैं, मस्ती के साथ सब करती गई हैं और उसी उसी में आगे बढ़ते बढ़ते इनके पास में कई और सारी फिल्में आई हैं, जिनमें एक आज की युद्ध की पसंदीदा फिल्मों में से एक बड़ी प्यारी सी फिल्म है सुपर 30, ये आपने की और इसमें भी आपका किरदार रहा, तो हम चाहते हैं कि अगर इसके बारे में आप कुछ किरदार के बारे में बताएं तो।
1: ये समय ना बहुत टफ था मेरे लिए,
0: अच्छा
1: क्योंकि कमिटमेंट हो चुकी थी और उसी वक्त मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी, तो हॉस्पिटलाइज थे। तो मैं जब भी आती थी बॉम्बे
0: हाँ
1: तो सीधा हॉस्पिटल जाती थी,
0: जी
1: तो बड़ा गंदा सा पैच था।
0: अच्छा
1: उस बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, लेकिन ये है कि आप जब कैरेक्टर आर्टिस्ट बन जाते हो तो आपके कई सीन्स जब कटने होते हैं ना, तो साइड जो एक्टर है उनके ही कटते हैं, हीरो हीरोइन के नहीं कटेंगे। तो बहरहाल जैसा भी था तो आई वाज सेटिस्फाइड थी। और अब चीजें चेंज हो चुकी हैं तो
0: हाँ
1: ह्यूमन टच नहीं रह गया है,
0: जी जी
1: तो वो मैंने मिस किया उस फिल्म में।
0: जी
1: और बाकी था सा अच्छा सा रोल था, और मैं जानती हूँ कि एडिटिंग हो रही है
0: जी
1: और एडिटिंग से ही फिल्म बनती है,
0: जी
1: तो इसलिए मैंने कभी उनपे क्वेश्चन नहीं किया कि मेरा ये सीन क्यों काटा, वो सीन क्यों काटा।
0: जी
1: लेकिन हाँ अच्छा लगा, प्रोडक्शन के जो लोग हैं, अभी लड़कियां आ गई हैं बहुत प्रोडक्शन
0: नहीं
1: में,
0: जी जी
1: तो उनके बीच में घिर के मस्ती करते हुए ठीक है, बट
0: हाँ
1: बाकी जो स्टार है वो तो अपने अपने वैंस में चले जाते हैं आजकल। हमारे टाइम पे हम लोग को बिठाया जाता था कि दूसरा क्या कर रहा है, उसको भी

0: चंदा किरदार को भी निभाया ससुराल फिल्म में, उसके बाद बहुत सारे किरदार किए आपने नदिया के बाद के बाद जी
1: नदिया के बाद बहुत ज्यादा काम नहीं किया मैंने
0: जी
1: काफी कुछ घर की भी प्रॉब्लम्स हो गई थी और यहाँ मैं सिस्टर के पास रह रही थी बहुत सारी चीजें हुई उस दौरान लेकिन ये है कि एक शंकरा वर्णम फिल्म आई थी
0: जी
1: विश्वनाथ जी साउथ के थे उन्होंने ये फिल्म बनाई थी उसका नाम था शंकरा वर्णम तो जब मैं थिएटर में काम करी थी तो इप्टा में
0: जी
1: तो वहाँ के जो सबसे बड़े जो कर्ता धरता थे आबिद रिजवी मुझे बिल्कुल बेटी की तरह माँ तो उन्होंने क्या किया कि मुझे बोले चलो तुमको एक तमिल फिल्म दिखाते हैं मैंने कहा मैं क्यों जाऊं तमिल मुझे समझ नहीं वो वही पढ़ती रह जाऊंगी मैं सब टाइटल
0: नीचे का जी
1: लेकिन वो ले गए
0: जी
1: और वो फर्स्ट फ्रेम शुरू हुआ फिल्म का और मैं ऐसे देखती रही मतलब जब फिल्म खत्म हुई तो मैं इतनी भरी हुई थी ओवरवेल्म्ड एकदम मैं कहा ऐसी भी फिल्में होती हैं क्या काश इस तरह की कोई फिल्म मैं कर पाती तो विद इन टू मंथ्स मुझे फोन आता है कि ऐसा ऐसा हम हिंदी वर्जन बनाना चाह रहे हैं
0: वही
1: तो
0: सेम फिल्म
1: हाँ सेम फिल्म लेकिन आपको जो गुरु है उनकी बेटी का रोल मैंने कहा कोई भी रोल है मैं करूंगी जुड़ना ऐसी फिल्म
0: जी,
1: से
0: जी
1: तो विश्वनाथ जी तो बहुत उनको पूजा जाता है वहां पे
0: जी
1: साउथ में सरगम ये सब उन्होंने बनाई तो उनके साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा उन्होंने बोला तुम्हारी आंखें अच्छी हैं बहुत लेकिन हाँ तो इनको इनहेंस कैसे कर सकते हो एक्टिंग के लिए
0: जी
1: एक बार पलक झपकाओ तो उसका क्या मीनिंग होता है दो बार झपकाओ तो मीनिंग ही चेंज हो जाता है तो वो सारी चीजें वो बताते थे ना तो ही जस्ट अभी पास्ट अवे उनका मंदिर वगैरह बनाया तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा नदिया के पार के बाद ससुराल थी ना
0: जी,
1: हाँ
0: जी जी उसके बाद ही
1: हाँ तो मस्ती में ही बस और वहीं पे मेरे हस्बैंड मिल गए मुझे हस्बैंड जो आज है
0: जी
1: उनकी फिल्म थी जो मैं नहीं करना चाह रही थी
0: अच्छा
1: लेकिन मेरे डायरेक्टर हैं
0: जी
1: मुझे लगा उनको काम मिलना चाहिए तो उस वजह से मैंने कहा कि अगर दादा कर रहे हैं तो मैं कर रही हूँ तो वो फिल्म की उसके बाद ना इतना सिनेरियो इतना गंदा हो गया था और कोई अच्छी फिल्में नहीं बन रही थी तो सिर्फ बुआ बन के दादी बन के चाची बन के खड़े रहना मैंने कहा मैं नहीं करूंगी
0: हाँ
1: तो वो टाइम मैंने अपनी शादी फिर बच्चों को देखना ये सब
0: जी जी
1: और फिर उसके बाद मुझे जब मैं फिल्म में आई तो पिछले 5 सालों की जुगनी
0: जी जुगनी
1: जुगनी बहुत अच्छी फिल्म
0: बहुत
1: देखी है
0: अच्छी
1: हाँ।
0: फिल्म जी
1: तो ये नए नए लोगों के साथ ने काम करना शुरू किया जब
0: हाँ
1: तो बहुत एनर्जी और बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है तो मैंने कहा नहीं ये तो सिनेरियो ठीक है अभी तो उसमें अच्छा रोल दिया उसने मुझे लड़की ने और उसका नाम है शेफाली भूषण
0: जी
1: अभी भी उनकी मराठी फिल्म बहुत हिट हुई है स्थल
0: अच्छा
1: हाँ तो उनके साथ काम करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ काम करके वेरी ड्रिवन सब लोग शीशा दिखा रहे हैं आपको मेकअप मैन की जरूरत नहीं है ना सब मिलके काम कर रहे हैं
0: मिलके काम कर रहे हैं पारिवारिक तरीके से काम कर रहे हैं
1: फिर मैंने अनुराग कश्यप वो मुझे ढूंढ रहा था कब से तो उसको लगा कि शायद मैं अमेरिका चली गई हूँ शादी आदि करके तो कुछ देख रहा था उसने रुको रुको ये साधना जी कहाँ है आजकल तो उन्होंने बताया यही है तो उन्होंने मुझे बुलाया आपको काम करना पड़ेगा मेरे साथ तो वो फिल्म की फिर उसमें मजा आया मुझे बहुत
0: अनुराग कश्यप जी के साथ में आपको एज ए डायरेक्टर वो जब साथ में है तो आपको क्या अलग लगा पहले का और
1: मुझे ये लगा कि वो कंफर्ट मैंने फील किया जो नदिया के पार में था
0: अच्छा
1: हाँ क्योंकि ये भी बोलते हाँ ऐसा जैसा आपको ठीक लगे ये बहुत अच्छा लग रहा है मतलब ये नहीं जकड़े हुए नहीं थे
0: हाँ
1: कि ऐसा ही करना है और कई कई जगह तो आए पैर छुए

0: बार मिले, और उसके बाद दूसरी बार मिले, मैं पहचानने से इनकार कर दिया उन्हें। इनकार में जानबूझ के नहीं, मेरी दाढ़ी रखी होगी शायद उसलिए। फिर तीसरी बार मिले जब साइन करा चुके थे, चौथी बार मिले, अरुण गोयल दोस्त थे, तो अरुण ने कहा ये राजू वो देखे जा रहे हैं मेरी तरफ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो बोले अरे साइनिंग अमाउंट लेके नहीं पहचान रही हो। मैंने कहा गॉड, क्योंकि आप कभी चश्मा पहन के आ जाते हैं, कभी दाढ़ी रख के आ जाते, इनको इतना गुस्सा है। बोले शादी करके बताता हूँ इसको, कैसे नाम नहीं याद रहेगा।
1: नाम याद कराने के लिए शादी कर ली।
0: शादी कर ली, बताइए अब। हालांकि बहुत दंगे फसाद हुए, 5 साल तक हम लोग चल रहा था अफेयर। और मेरे फादर ने बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थे।
1: अच्छा,
0: फिर
1: वही लड़की हीरोइन चाहिए थी, लेकिन उसके साथ शादी नहीं करा रही थी।
0: होता है ना दिमाग में, शादी फिल्म लाइन की लड़की है, ऊपर से तुम उसको घर लाओगे तो हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। लेकिन 5 साल के बाद जब वो माने तो बहुत अच्छे से माने। फिर
1: मैं जानना चाहती हूँ एक कोई गीत जो आप अपने सफेद घोड़े पे आए हुए चश्मे वाले दाढ़ी वाले हैंडसम से राजकुमार के लिए दें।
0: ये रात भीगी भीगी।

0: अब हम लोग उत्तर प्रदेश की फिल्म में जो आपने की है यूपी की भोजपुरी फिल्म है उनके बारे में चर्चा करेंगे।
1: भोजपुरी फिल्म तो एक ही शायद मैंने की है,
0: वो वाली की है ना, गंगा मैया तो है।
1: ये तो मेरे फादर इन लॉ की फिल्म थी, पायनियर थे वो
0: जी।
1: और ये फिल्म उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के कहने पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, सब इनकी एक दोस्ती थी, बोला भोजपुरी बड़ी खूबसूरत लगती है सुनने में, क्यों ना एक फिल्म बनाई जाए। तो ये चले आए मेरे फादर इन लॉ बक्सा उठा के, और वहीं जहाँ दादर उतरे सामने ही वहाँ पे एक होटल है जहाँ पे सब स्टार वगैरह आते थे, वहाँ वो मिले नासिर साहब से, नासिर हुसैन जो जिन्होंने फिल्म, और उन्होंने स्टोरी सुनाई और उनको साइन भी कर लिया। कुमकुम जी मदर इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट में फंसी हुई थी, उनको संभाल के निकाला और फिल्म बनाई गंगा मैया तो ही पियरी चढ़े वो, जो कि ब्लॉकबस्टर, आज भी ब्लॉकबस्टर है। तो उसको मेरे फादर ने को ट्रिब्यूट देने के लिए एक और फिल्म बनाई मेरे हस्बैंड ने, कि वो चले गए इस दुनिया से, गंगा जैसन पावन प्रीतिया हमार।
0: अच्छा।
1: तो उसमें मैंने काम किया
0: जी,
1: क्योंकि

0: नहीं है। अगर लगान दिखा रहे हो आप, बैकड्रॉप है आपका गांव वाला, मतलब कि भोजपुरी फिल्म हो गई क्या?
1: अच्छा,
0: ऐसा था।
1: आपने जैसे बहुत सारी फिल्मों में काम किया और अभी हमें टीवी सीरियल्स के बारे में ही बात करनी है, तो उसके पहले मैं चाहती हूँ, जो फिल्मों की बात कर रहे थे उसमें नदिया के पार बड़ी खूबसूरत सी फिल्म है, और उसका जो सबसे ज्यादा पसंदीदा गीत साधना जी को, मुंजा को, कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, वो गीत हम सुनाना चाहेंगे।
0: देखिए, कौन दिशा में तो सब गाते ही हैं,
1: जी
0: बट मेरे सामने पहली रिकॉर्डिंग हुई थी गुंजारे, चंदन चंदन, तो एक
1: हाँ
0: वो इतनी रोमांटिक थी ना धुन उसकी,
1: जी
0: और दोनों का जो एक प्यार था उस फिल्म में कैसे दिखाया गया था, और थोड़ा अलग था,
1: जी
0: चंदन चंदन ऐसा,
1: बहुत अच्छा।
0: तो मुझे ये सबसे ज्यादा पसंद है।
1: रिकॉर्डिंग के समय आप थे क्या इस गीत
0: हाँ,
1: के?
0: इसकी रिकॉर्डिंग में थे मैं।
1: रविंद्र जैन वहां पे
0: हाँ
1: उसका डायरेक्शन कर रहे होंगे,
0: हाँ
1: गाया जा
0: रवि
1: रहा
0: जी,
1: होगा,
0: हाँ
1: कैसा कैसा एम्बियंस था, कैसा लग रहा था सुनते समय?
0: बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि वो गाना है ही अच्छा, अगर आप
1: जी, बहुत
0: ये
1: खूबसूरत गीत
0: हाँ,
1: है।
0: और मैं करने वाली हूँ तो वो भी एक्साइटमेंट था, और हर रिकॉर्डिंग में थी मैं, लेकिन ये कुछ अलग इसने असर किया मुझे,
1: जी,
0: और आज तक मैं बहुत बहुत ज्यादा इसको पसंद करती हूँ।
1: तो जब आप इसे पसंद करती हैं तो ये गीत आपके लिए हम सबकी तरफ से बहुत प्यार से।

0: आपकी पसंद का गीत तो हमने सुना दिया, लेकिन जब सुनाया है तो हमारे यहाँ कहते हैं ना रिटर्न गिफ्ट मिलती है,
1: हाँ
0: तो एक रिटर्न गिफ्ट लेना चाहेंगे कि ये गीत जब रिकॉर्ड हो रहा था तो उस समय आपको कैसा लग रहा था, या क्या देखा आपने उस समय जब आप पहली बार स्टूडियो गई
1: हाँ
0: होंगी शायद?
1: हाँ बस माहौल देखा, माहौल कमाल का होता है, क्योंकि लगता है सुनते ही रहो, चलते रहे ये म्यूजिक, क्योंकि कैसे बैठ के डिस्कस करना, और हेमलता जी थी,
0: जी
1: और कैसे वो लाइव गाना देखना, और सारे इंस्ट्रूमेंट होते थे साथ में,
0: एक साथ
1: एक साथ।
0: बहुत बड़े कमरे में,
1: बहुत बड़ा कमरा तो नहीं था, फेमस में हुआ था,
0: अच्छा फेमस स्टूडियो
1: बट
0: में।
1: जितना था सब भरा हुआ था, और उसकी जो ऊर्जा होती है ना, वो आपको अलग महसूस कराती है, एकदम लग रहा था मैं हवा में उड़ रही हूँ, अब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा,
0: हाँ,
1: तो ये बड़ी कमाल की चीज है।
0: वहां पे रविंद्र जैन जी भी संगीतकार की तरह
1: ओ
0: विराजमान होंगे।
1: भैया, मैं तो प्रणाम करती हूँ, ऐसा आदमी मैं सच्ची में सोच नहीं सकता हूँ, कि दादा को एक गाना नहीं पसंद आया था,
0: हाँ,
1: उन्होंने ऑन द स्पॉट 30 गाने सुना है,
0: 30 गाने, 30 धुनें,
1: गाने में, और सुना रही थी पसंद है नहीं है, अच्छा और ये, और वर्ड्स उसी टाइम लगा रहे थे, ये नहीं कि लिखे हुए गाने पढ़ रहे थे, वो बनाते थे उसी टाइम स्पॉट पे, अच्छा ये वाला ठीक लग रहा है, अच्छा छोड़ी छोड़ी नहीं लग रहा ना, ये अच्छा लग रहा है, साधना तुमको भी, मुझे भी उतनी इंपॉर्टेंस दी जाती थी ना,
0: जी।
1: तो मुझे तो लगता था ये आदमी इतना गुणी, इतना गुणी, माई गॉड, उसका म्यूजिक भी बना लेते थे
0: शब्द भी
1: और
0: लिख
1: शब्द भी लिखते थे, तो
0: लेते
1: 1 सेकंड में
0: 30 गाने एक समय पे बना
1: बत्तीस
0: के
1: होंगे
0: सुनाना,
1: 30 होंगे मुझे इतना याद नहीं, लेकिन चलते जा रहा था इन लोग का, दादा कह
0: लगातार।
1: रहे नहीं अब एक और सुना दीजिए, तो अच्छा ये वर्ड्स इधर डाल, शुरू कर दिया, तो
0: और
1: उनसे
0: कहीं लिखा नहीं जाए क्योंकि देख नहीं सकते, तो लिखते नहीं है,
1: हाँ। उसके बाद
0: अद्भुत।
1: फिर हम लोग के बहुत सारे टूर हुए,
0: हाँ,
1: जिसमें राज बाबू, राजकुमार बड़जात्या जी, उनकी वाइफ सुधा भाभी, और रविंद्र जैन जी और उनकी वाइफ, और मैं और सचिन, हम लोगों ने बहुत शोज किए, तब उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल गायब हो यहाँ से, तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम गाना गाती, मैं तुमसे गवाता,
0: ये रविंद्र जी ने कहा
1: हाँ
0: से जी।
1: क्योंकि उनके साथ जितने टूर होते थे सबको लगता था मैंने ही गाया फिल्में, तो बहुत प्यार देते थे, और बहुत बहुत बहुत इज्जत और बहुत प्यार,
0: जी, और
1: दादू
0: जब
1: दादी
0: टूर
1: ने,
0: करने जाते थे तब क्या एक्सपीरियंस होता था स्टेज पे, जो उनके लाइव शोज होते होंगे वो
1: हाँ
0: आनंद ही अलग आता
1: हाँ
0: होगा
1: वो
0: देख के।
1: तो शिरनी थी मैं तब बस चलो कहाँ चलना है, बोलना है क्या बोलना है, तो आई थिंक

0: में काम किया है, जो टीवी के पर्दे पर काम किया है, उस तक पहुंचने का कुछ ऐसा जरिया था या चले गए ऐसे ही घूमते
1: नहीं
0: फिरते?
1: नहीं बस एक दिन फोन आ गया मुझे, तो मैंने अपने ससुर को बोला, क्योंकि ऐसा सुनने में आया था कि शायद वो परमिशन नहीं देंगे अब, कि इतने बड़े खानदान में लड़की आ गई, अब शूटिंग भी करेगी। तो ये
0: हाँ
1: चारों तरफ से ना मुझे बता दिया गया था,
0: अच्छा
1: नॉट फॉर माई हस्बैंड, वो इंडल्ज ही नहीं किए इसमें। लेकिन जब ऐसा हुआ और मुझे लगा कॉमेडी मिल रहा है मुझे, तो मुझे करना है, तो मैंने फोन कर लिया डायरेक्ट अपने फादर इन लॉ को। और बच्चे थोड़े तो बड़े हो गए थे, तो मैंने कहा कि बाबा ऐसा ऐसा मुझे रोल आ रहा है, मैं कर लूँ? तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो अगर अच्छा है तो,
0: अरे वाह,
1: लेकिन अच्छे अच्छे रोल करना जो भी। तो इन
0: हाँ
1: लोग को किसी को विश्वास ही नहीं हुआ कि बाबा ने बोल, बाबा ने
0: एक
1: बोल
0: बार में
1: दिया।
0: बोल दिया।
1: तो मैंने कहा ऐसे हवा मत बना के रखो।
0: यानी
1: तो
0: आपको मायका
1: हाँ
0: भी सुंदर मिला, ससुराल भी अच्छा
1: हाँ
0: मिला, दोनों
1: मेरी
0: जगह बढ़िया।
1: सास ससुर तो बहुत अच्छे थे,
0: जी
1: तो जहां भी है बस खुश रहे।
0: जी बिल्कुल। साधना जी, थोड़ी देर पहले आप जिक्र कर रही थी आपके बेटे का, जो आपकी बदमाशियों से परेशान है। पर हम उसे कहना चाहेंगे कि भाई परेशान मत हो, यही बदमाशियों ने हमारे, हम जाने कितने करोड़ों के चेहरों में कितनी बार मुस्कुराहट लाई है।
1: हाँ
0: तो आपके दो बच्चे हैं अगर मैं गलत
1: हाँ
0: नहीं हूं, तो
1: हाँ
0: दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, वो भी अभिनय की जगत है
1: नहीं
0: या?
1: नहीं मेरा बेटा तो बहुत दूर है,
0: अच्छा
1: उसको फेमस नहीं होना है, वो बिल्कुल ही अलग सोचता है।
0: जी
1: और मेरी बेटी ने की है फिल्में, तमिल में की हैं,
0: जी
1: उसको लॉन्च किया था सतीश कौशिक ने,
0: जी
1: अनुपम जी ने,
0: बहुत बढ़िया।
1: लेकिन बस तकदीर नहीं थी कि जब रिलीज हुई पिक्चर जिस थिएटर में लगी, स्वाइन फ्लू की वजह से सारे थिएटर बंद हो गए, तो वो पिक्चर भी ऐसे ही ढह गई।
0: हाँ उस
1: तो
0: समय वो चल नहीं
1: फिर
0: पाई।
1: वो उसको मिला उधर काम, फिर एक टाइम के बाद चीजें हो जाती है ना कि उतना अच्छा किरदार नहीं मिल रहा है, आपने हीरोइन किया है, तो वो अपनी लाइफ में अपना देख रही है, शोज करती है या टीवी वगैरह जो भी है, ऑडिशन वगैरह वो वैसे ही देती है जैसे और लोग देते हैं।
0: मतलब
1: तो
0: उसमें साधना जी का हस्तक्षेप नहीं होता,
1: नहीं मैं करती भी नहीं, क्योंकि
0: मेहनत करो अपनी,
1: हाँ अपनी मेहनत करो।
0: बहुत अच्छी बात है, उनको
1: क्योंकि मैंने अपने लिए
0: अपना
1: कभी किसी को बोला नहीं, तो बच्चे के लिए क्या बोलूंगी।
0: जी। लेकिन आप जो चुलबुला किरदार है आपका, और जैसी आप हैं, और मैं इतने समय से आपको जान रही हूं, तो मैं समझ रही हूं कि आपके साथ बैठे अगर 2 घंटे बैठ के बातें की जाए तो शायद मेरे ठहाके रुकेंगे नहीं। तो वो जो किरदार है, तो एक बार अगर आपको ऐसा सोचने का मौका मिले कि कुछ ऐसी फिल्म करनी है, तो क्या आप करेंगी?
1: बिल्कुल करूंगी, मुझे कॉमेडी करना, मेरा वो साइड एक्सप्लोर हुआ ही नहीं।
0: अच्छा
1: हाँ तो साजिद के साथ फिल्म की मैंने ना ये सुपर 30,
0: जी
1: तो उसको मैंने एक मैसेज भेजा है कि मुझे ना रोने धोने वाली माँ के लिए बुलाना नहीं तुम लोग। मूवी थिएटर बुलाना, कॉमेडी कोई अच्छा तो बोले 100%,
0: हाँ
1: अब देखते हैं क्या होता
0: जी बिल्कुल होगा,
1: है।
0: आपने कह दिया, सोच लिया। और
1: हाँ
0: विविध भारती के परिसर में कई चीजें जो सोच ली जाती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ऐसा
1: हाँ ऐसा
0: हम मान
1: है,
0: के चलते हैं।
1: चलिए
0: बिल्कुल, ये
1: ठीक
0: जगह
1: है।
0: बड़ी
1: हाँ
0: बड़े पवित्र लोग यहाँ पर
1: हाँ
0: आए हैं।
1: हाँ
0: आप जानते हैं कि यहाँ पर
1: हाँ
0: अभी आप तस्वीरें देखते हुए आ
1: हाँ
0: रहे थे, तो बड़े बड़े किरदार आए हैं, तो ऊर्जा बड़ी अद्भुत है
1: अच्छी
0: यहाँ की
1: है। हाँ लेकिन एक चीज बता रही हूँ मैं
0: जी।
1: कि ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ सिर्फ मतलब बेड ऑफ रोजेस बोलते हैं ना, बहुत बहुत तकलीफें आई और बहुत ऊंच नीच भी हुई और ट्रॉमाज हुए हैं लाइफ के, बहुत सारी चीजें हुई हैं। बस मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं थोड़े टाइम के बाद अपने आप हैप्पीनेस की तरफ चली जाती हूँ।
0: ऊर्जा सकारात्मक
1: हाँ वो मैं नहीं रख सकती इतना, क्योंकि मुझे लगता है क्राइम है खुद को दुख देना, दे के रहना या अपने पे तरस खा के रहना, क्योंकि आप सबको सब होता है मुझे और औरतों की तरह, ऐसा नहीं है।
0: हाँ
1: लेकिन मैं सबको बताती भी नहीं हूँ जो उस दौर में हैं या मुझे फोन करके अपना

0: सुनने मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है साधना जी। और इस अच्छाई के बीच में अगर वो शुरुआत वाली अच्छाई आप पूरी कर दें हमारा एक गाना जो है, तो क्योंकि रविंद्र जैन जी जब कह गए कि तुमसे ही गवा लेते, तो हम भी चाहते हैं विविध भारती में आई है तो कुछ गाने हम भी
1: मैं
0: सुन
1: एक
0: लें
1: कोशिश करती हूँ।
0: जी।
1: चलिए मैं आपको आज ये भी बताती हूँ कि मैं रफी साहब की बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: आह
1: वो मतलब मेरे लिए भगवान भी हैं, सब कुछ है। मुझे
0: जी
1: लगता है मैंने रोमांस, दर्द, दुख जो भी है उनकी आवाज से सीखा है।
0: जी
1: उनका एक गाना गा दे रही हूँ।
0: जी

पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छांव जुल्फ की,

0: अब इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और शायद मुझे लगता है कि अभी अगर 2 घंटे और बात की जाए तो सारा जी की कहानी पूरी नहीं होगी, पर हम चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए और हमारे जो नए नए बच्चे अभिनय के क्षेत्र में आ रहे हैं और बाकी हम जो महिलाएं, इन सब के लिए कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो.
1: बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं कि क्या बच्चे, आई डोंट नो, उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूंगी मैं
0: जी.
1: जो बोलना चाह रहे हैं वो रोज आता है कि अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए. और मुझे लगता है कि जिंदगी में जैसे हेल्थ, हेल्थ ऐसी चीज है जिसपे औरतों का बहुत कम ख्याल होता है, क्योंकि उसको लगता है बेटे को भी बादाम खिला दूं, उसको भी खिला दूं, उसको भी खिला, बच्चे का तो देखती हूँ अपने लिए,
0: बचता कभी नहीं,
1: बचता भी नहीं है और कभी क्रेप भी नहीं करती है माए. लेकिन सबसे पहले

0: वीस वगैरह बेचारी सब खुश अच्छे से सज धज रहे हैं। औरतों का काम है, ये
1: जी
0: ड्यूटी है उनका, मतलब राइट बनता है कि सिर्फ खाना ही नहीं बनाए, अपने आप को भी बनाए। और अच्छी फिल्में देखें तो हम लोग अच्छी फिल्में करेंगे। मेरी एक फिल्म आ रही है कैसी है पहेली,
1: जी
0: वो जरूर आप लोग देखिएगा। उसमें माँ बेटे का है स्टोरी, माँ बेटे की बहुत
1: अच्छा,
0: सारे उन फेस्टिवल में जा चुकी है,
1: अरे वाह,
0: और न्यूयॉर्क में तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। तो
1: क्या
0: मैं
1: बात है।
0: चाहती हूँ कि ये सब देखें,
1: फिल्म कैसी है पहेली,
0: कैसी है पहेली।
1: जरूर से हम सभी विद भारती परिवार जरूर इस फिल्म को देखेंगे, इतना हमें विश्वास है। और आगे आपके पास में बहुत सारी फिल्में आएं, आप वो चुलबुली वाली साधना सिंह हम जरूर देखना चाहते हैं, हमारा बड़ा मन है, क्योंकि हम हमारी उस वाली गुंजा को बड़ा मिस कर रहे हैं जो बड़ी बदमाशियां करती थी, सो हम वो देखना चाहते हैं उस किरदार में आपको। आप विविध भारती तक आई साधना जी, इतना सारा समय दिया, इतने प्रेम से समय दिया,
0: अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगता है, विविध भारती से कहीं ना कहीं आत्मा जुड़ी हुई है।
1: तो हमारे साथ आप बने रहिए, हमारा साथ देते रहिए, नए नए किस्से जब कभी आए तो हमारे पास तक जरूर आते रहिए साधना जी। अच्छा
0: अच्छा
1: लगता है
0: लगा
1: विविध भारती में जब आप
0: बिल्कुल,
1: आते हैं, आप लोगों की ऊर्जा आती है, तो आप यहां तक आए उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, प्रणाम।
0: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आपने सुनी अभिनेत्री साधना सिंह से विधि जैन की ये बातचीत, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: जादू पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की कनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପ୍ରେ ବୁକ୍ ଏ କଲ୍ ୱିଥ୍ ବିଏଲ୍ଓ ସୁବିଧାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलियाचक के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे

आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हर घर में नई कहानी होती है, कुछ पुरानी यादें, कुछ नए लम्हे, हर दीवार हर कोना दास्तां बयां करता है।
1: और इन पलों की मजबूत नींव है चेटिनाड सीमेंट का मैक्सक्रीट सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस फॉर योर होम।
2: अरे मिस्टर अय्यर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
3: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है, चेटिनाड सीमेंट पर।
1: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले, चेटिनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट, 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो जीव पानी कार्यक्रम को स्वागत जनाउची की कहथिले भाई
1: मु आशीष के जे
0: अच्छा आशीष भाई को कहथिले
1: मुंबई
0: मुंबई रो कोन करथि अपन सिटी
1: एडी प्राइवेट कंपनी ने जा करथि
0: अच्छा ओडिसा रो कोठु अपन ने को जिला रे अच्छा ढेंकानाल रो जाई अपन मुंबई रे काम करंती जॉब करंती अच्छा माने को सेक्टर रे अपन काम करंती
1: इलेक्ट्रिकल
0: अच्छा तो माने एठी पढा पढी सरिला पर अपन मुंबई जाई जंती
1: हां जोंला घर छ तबरे ये आमे ब्याह कर भी जाई परन सडे आसीबो निजे से गरीब लेखाइबो निजे सोइबो आउ जीवो पड़े
0: अच्छा जॉब करंती ता सहित निजरो माने घर काम रोसई सब करी की ता सहित जॉब आज कोन गीत सुनिबे कोंतु
1: मोड गीत सुना चाहो के सीता अपना शिव नथ वही दन ने
0: ठीक अच्छे निश्चित भाव गीत आपको सुनेबू।

0: अब टेलीकॉम के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीकॉम फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: एक मजबूत घर बिल्कुल उस पिता की तरह होता है जो हर मौसम सहकर भी घर की नींव को कभी हिलने नहीं देता।
3: आपके घर के लिए भरोसे का दूसरा नाम चेटिनाड सीमेंट का मैक्स ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: बेटा शौर्य, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और
5: चॉइस।
4: बेटा शौर्य, ये तुम्हारा रूम है जो पहले मेरा स्टडी था और

0: କିମ୍ବା ଭୋଟର ସର୍ଭିସ ପୋର୍ଟାଲ କିମ୍ବା ଇସିଆଇ ନେଟ୍ ଆପ୍ରେ ବୁକେ କଲ୍ ୱିଥ୍ ବିଏଲ୍ଓ ସୁବିଧାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି।
1: अरे मिस्टर आयर, आपका घर तो 1970 से बना है ना, आज भी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है?
2: सिंपल है, तब भी भरोसा था और आज भी है। चेट्टीनाड सीमेंट पर
3: मजबूती जो सालों नहीं पीढ़ियों तक चले। चेट्टीनाड सीमेंट का सुपर ग्रेड सीमेंट 64 सालों की बुनियाद के साथ। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: हेलो
5: राजेश बाबू, वो पुलिस थाना रु कहूची।
4: पुणी थारे
5: आपण डिजिटल अरेस्ट रहंती, अन्य ठरी को जानतु एकुटिया। आपणंको पार्सल रे ड्रग मिलीची, लंबा फसीबे।
6: 10 लाख जंतु बंच जीवे।
4: सर एथि कोठ
6: होटल लिंक पठाईची, एबे प्रोसेसिंग पाई 2 लाख पठांतु। बाकी परे
4: सर 2 लाख
7: कोन हला बापा
4: जियो, से माने कोचंती मो पार्सल बिरु ड्रग्स मिलीची।
5: अरे
4: काटी देला,
7: पैनिक हुवानी बापा, डिजिटल अरेस्ट बळी किछि नाही, ए सब फ्रॉड।
4: फ्रॉड
7: पुलिस बैंक आरबीआई इत्यादि नामरे आसुथिबा साइबर अपराधिंक फोन किंबा वीडियो कर प्रति सावधान रहंतु। तांकु कोनसी टंका पठांतु नाही, आउ तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करंतु। जदि बुद्धिमता न देखिबे
4: तो टंका हरेइबे।
8: आरबीआई कहे सचेतन होवंतु, सतर्क रहंतु।
9: अच्छा दास बाबू, आपनको घरटा 1970 रे तयाइतला राइट, हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
10: अरे एटा एकदम सिंपल, एवं सहीथि पय सेतेबेले मोर विश्वास रखीतली, एवं आरी मध्य चेट्टीनाड सीमेंट उपरे
11: सति जहां वर्षर्षन होए बरगेढी पाई रहिथाय। चेट्टीनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मुडवा। चेट्टीनाड सीमेंट, द परफेक्ट कॉन्क्रीट चॉइस।
12: सुना सुना सुना गा हेउ अबा शहर ओडिशा वासिंक पाई खुशी रो खबर।
13: कौन कहुनु,
12: छातरे सोलार पैनल लागिबो, 1,38,000 पर्यंत सब्सिडी भी मिलिबो, आउ इलेक्ट्रिक बिल विद्युत।
14: ये आकाशवाणी है, अब आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग को न्यूनतम करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। 30 जून तक चलने वाले अभियान के लिए 1,600 से अधिक दल गठित किए गए हैं। इसके अलावा उर्वरकों का अधिक प्रयोग करने वाले जिलों के लिए 500 दल बनाए गए हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए आर्सेलर मित्तल निपुण स्टील इंडिया नामक एक निजी कंपनी के निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य बन गया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये उपलब्धि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग प्रबंधित परिणाम उन्मुख संस्थानों में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों और उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
15: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। आज उस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीन है जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए, और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीन है जो कि बहुत ही एक अच्छे, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
14: श्री वैष्णव ने कहा कि लिथियम बैटरी और स्थायी चुंबक कई आधुनिक तकनीकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना है कि इनका निर्माण भारत में होना चाहिए और इनकी तकनीक का विकास स्वदेशी स्तर पर होना चाहिए। कार्मिक

0: शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉयस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायत दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल उच्च स्तर की सतर्कता पर हैं और आवश्यकता पड़ने पर ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण के लिए तैयार हैं। पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पासिंग आउट परेड में जनरल द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने सटीक और दृढ़ संकल्प के साथ उकसावे का जवाब देने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये अभियान अब भी जारी है। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ नाइन भारत की 5 दिन की यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए, जहां महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राजस्व आसूचना निदेशालय ने केरलम में मादक पदार्थों के खिलाफ समन्वित अभियान के अंतर्गत 24 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं। चक्रव्यूह अभियान के अंतर्गत कोच्चि, मलप्पुरम और तिरुवनंतपुरम में मेथकालोन, मेथमफेटामाइन और हशीश का तेल सहित कई मादक पदार्थ जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल पर किया जाएगा। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ से उंग जाए और किम वॉन हो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Vasa Williams. Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare Shivraj Singh Chauhan today said the Khet Bachao Abhiyan should be made a comprehensive national campaign connecting farms, farmers and villages. The minister said this while chairing a high-level meeting regarding the preparations of the Khet Bachao Abhiyan in New Delhi. During the meeting, he said the focus of the campaign will be on balanced and judicious use of fertilizers, timely advice to farmers in the view of weather-related challenges, active participation at panchayat level, and delivering the benefits of the schemes directly to the villages. Prime Minister Narendra Modi will share his thoughts with the people of the country and abroad in the Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 a.m. tomorrow. It will be the 134th episode of the monthly radio program. The program will be broadcast across the entire Akashvani and Doordarshan network, the AIR news website and the News on AIR mobile app. It will also be live streamed on the YouTube channel.

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया। उमापति ने तब निर्मल रामचरित मानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुरुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता आकाशवाणी
1: सब वर्ग र सब वयसर मनोरंजन पाई
0: संस्कृति मूल्यबोध एवं परंपरार एकनिष्ठ प्रवक्ता

महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार श्रोता बंधु आपण मानको आजिर बयानी कार्यक्रम को सबुज स्वागत श्रोता बंधु वर्तमान चारिआड़े प्रचंड खरा विभिन्न अंचल तापमात्रा अस्वाभाविक भाव बढ़ी चली पानी पागरे अनियमितता देखा जीवा फलरे लोक माने हंत संत होउछंती ए प्रकार तारतम्य तथा कु प्रभाव पई आमे माने ही दायी निजर आवश्यकता को पूरण करबा को जाई आमे गच्छ काटुजे शिल्पायन नारे गच्छ संपदर अवक्षय करुछे आधुनिकता को आउ टिके सुंदर करबा को जाई प्रकृति विरोधी कार्य करुछु जार सीधा सड़क कु प्रभाव आमे उपरे पडुछि ता छोडा जंगल निकटे बसवास करथिबा किछि लोक पोडु चास नारे तथा महुला फूल संघ आसारे जंगल रे निया लगे दोउछंती एहा द्वारा आम जंगल संपद नष्ट हेबा सहित पशु पक्षी मानकर जीवन हानि हेउछि प्राय आम राज्य रे मार्च मासर द्वितीय सप्ताह ठारु जून मास मझिया मझि समय पर्यंत ग्रीष्म ऋतु चली थाए एहि समय रे आमे माने प्रचंड रुद्र तापरे विभिन्न प्रकार असुविधार सम्मुखीन होइ थाउ वृक्ष लता जीव जंतु कीट पतंग समस्तक पई ग्रीष्म निधाग काल गोटे कष्टकर समय कहिले अत्युक्ति हेब नाही विशेष कर जेतेबेले जल कष्ट हुए विभिन्न गच्छ पत्र छोडा देइ थाए सेही समय रे आम जंगल रे रहुतिबा वन्य प्राणी का अवस्था

ये गीत काफी लोकप्रिय रहा। हालांकि बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गाने तड़प तड़प से। उनके गीतों से युवा अपने आप को रिलेट कर पाते थे, क्योंकि उनके गीतों में वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी महसूस कर पाते थे और भावनात्मक रूप से भी जुड़ जाते थे, जैसे कि ये गाना उन्हीं के लिए गाया गया हो।

1999 में उन्होंने अपना एक एल्बम लॉन्च किया पल, जिसका गीत यारों दोस्ती बड़ी ही हसीन है काफी लोकप्रिय रहा और स्कूल कॉलेज के लगभग हर फेयरवेल फंक्शंस का हिस्सा रहता था। इस गाने के बगैर कोई भी फेयरवेल फंक्शन अधूरा ही माना जाता था।

उनको 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नामित किया गया और उन्हें बचना ए हसीनो फिल्म के गाने खुदा जाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का स्क्रीन अवार्ड मिला।

के बचपन में डॉक्टर बनना चाहते थे। कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलकर परफॉर्म भी करते थे और नेचर लवर भी थे। केके के कुछ अपने उसूल भी थे जिनसे वो समझौता नहीं करते थे। एक बार एक गाने को रिकॉर्ड करते वक्त उन्हें लगा कि गीत के बोल ठीक नहीं है और उनकी इस आपत्ति का सम्मान करते हुए गाने के बोल बदल दिए गए। अच्छे गायक की उनकी अपनी परिभाषा थी। केके मानते थे कि अच्छा सिंगर वही है जो किसी संगीतकार के गाने को अपना बना के गा सके।

0: संगीतकार ललित पंडित ने कृष्ण कुमार कुन्नाथ के लिए अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए।
1: केके को पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी बहुत प्यार करती है, बहुत ही अच्छे कलाकार होने के अलावा बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, बहुत दोस्त थे मेरे साथ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मैंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में, लाइफ में कभी कभी, और शोबिज मुकेश भट्ट जी की फिल्म में गाने गाए हैं इन्होंने सारे मेरे, जतिन ललित के भी गाने गाए हैं। उनकी आवाज में एक यूथ को अट्रैक्ट करने की एक क्षमता थी और गाने में जो सुर पकड़ने की ताकत थी उनमें बहुत थी। और सबसे बड़ी बात है जो सिंगर में लोग ढूंढते हैं और जो कुदरत की तरफ से आती है वो एक वॉइस क्वालिटी। उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत ही यूथफुल वॉइस क्वालिटी थी। और वॉइस क्वालिटी का ऐसा होता है कि एज से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता, वॉइस पुरानी नहीं होती आपकी, आपकी गायकी आपको मेंटेन करनी पड़ती है। और वो केक

के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से कॉन्सर्ट्स का हिस्सा बने, जिसके लिए वो खास तौर से जाने जाते थे। युवा दिलों की धड़कन बने और अपने आखिरी पलों में भी अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो युवाओं के साथ ही थे। 53 वर्ष की अवस्था में मंगलवार 31 मई 2022 को कोलकाता में कॉलेज के कॉन्सर्ट के बाद हम सबको हमेशा के लिए अलविदा कह गए।

0: श्रोताओं, आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित था पार्श्व गायक के यानी कृष्ण कुमार कुन्नाथ पर। आलेख और स्वर दिलीप का, संपादन और प्रस्तुति तेजस्वी कांबले की।
1: आज के फनकार।

छाएगी प्रोग्राम थोड़ी ही देर में।